मॉर्निंग डियर लिसनर्स, कैसे हैं? हाँ, बहुतों की सुबह हो गई, बहुत अभी भी आंख मल रहे हैं और बहुतों ने तो भाई अब ठान लिया है कि ब्लैंकेट को तेजी से ओढ़ लो ताकि सताक्षी की आवाज भी कानों में ना पड़े। लेकिन मैं देखिए ऐसी आवाज है मेरी ना कि मैं ब्लैंकेट के कहीं अंदर से भी आपके साथ जुड़ जाऊंगी और आपसे बातें कर लूंगी, इसलिए ये कोशिश भी बेकार है कि आप अपने आप को छुपा लें या अपने कानों को जोर से बंद कर लें। मैं देखिए जब तक आपकी मॉर्निंग होती नहीं है, मतलब आप उठते नहीं है, तब तक मेरा शोर तो बंद होने वाला है नहीं। हम एक काम कर सकती हूँ, जब तक आप उठते हैं आपके लिए बढ़िया से गाने प्ले कर सकती हूँ, तो बस धीरे धीरे हमें सुनते रहिए ब्लैंकेट के अंदर से ही सही, ताकि आप टाइमली उठ जाएं और अपने दिन की शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, नमस्कार, मैं हूँ सताक्षी और ये है आपका ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। चलिए इट हैपेंस इतना बेहतरीन शो है कि आपके मॉर्निंग को आपके लिए खास बनाता रहा है और आगे भी बनाएगा, तो इसकी शुरुआत करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। सताक्षी के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं इट हैपेंस।

इट हैपन सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर, आपके साथ सताक्षी है और गाने जारी रहेंगे, आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन ये वक्त अभी उनके लिए है जो हमारे आज के खास लिसनर्स हैं। तो बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी की ओर से। कुछ दिन जिंदगी में बहुत रापचिक होते हैं और मैं कहती हूँ ऐसे दिनों में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, फिर भले ही आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े, है ना, क्योंकि भाई आज कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बर्थडे के दिन स्ट्रेस मिले तो पूरे साल रहता है, वो वाला फंडा नहीं चाहिए। तो आज मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ब्याह तो हो गया, लेकिन इस ब्याह को निभाना सबसे मुश्किल काम होता है और आप निभा रहे हैं, यानी आपकी शादी जो है वो बढ़िया निभ रही है और दोनों आज आई होप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आज वाकई आप इस रिश्ते की एक और खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आप सभी के नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक स्टेज।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इट हैपेंस सताक्षी के साथ आप रेडियो प्रसवानी पर एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मॉर्निंग के कुछ जबरदस्त गाने जिनके साथ ये मॉर्निंग वाइब्स और भी रापचिक और मजेदार हो रही हैं। वैसे जिंदगी में देखिए सबकी ना एक चीज जरूर होती है और वो ये कि एक लिमिट तक वो लोगों को समझाते रहते हैं भैया हमें ऐसे नहीं है, भैया हमने ये नहीं करना चाहता, अरे ये तो ऐसे हो गया। मतलब अपने किए की या जो नहीं किया कई बार उसकी भी आप सफाई देते हैं, लेकिन लोगों को जो सोचना है वो वही सोचते हैं, ये तो दुनिया की रीत है। तो भाई देखिए अगर आप भी लोगों को सफाई दे देकर थक गए हैं तो भाई काम करिए मेरे कहने से, है ना, एक जगह जाइए शांत जगह पर और शांति से बैठ जाइए और खुद को समझाइए, खुद से कहिए कि क्या ही मिल रहा है सफाई देने से, कुछ नहीं होने वाला, है ना। और अब आप ये डिसाइड कीजिए वहां बैठकर कि अब आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कुछ। जब दूसरों को समझाते हुए थक जाएं तो कभी कभी खुद को समझाना जरूरी हो जाता है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। जी हाँ, क्योंकि इट हैपेंस है आपका ब्रेकफास्ट शो जहां पर हम बात करते हैं आपके ब्रेकफास्ट की, आपसे ब्रेकफास्ट का मतलब खाने पीने के साथ जिंदगी की भी। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, आइए आगे बढ़ते हैं अगले ट्रैक के साथ।

बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं ठापंस और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं कुछ बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। अच्छा बात करूं अगर उनसे जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते यार कैसे करें, इतने काम के बाद शाम को भूख लगाती है तो कुकीज खा लेते हैं है ना, दोपहर में लंच ना करें तो काम नहीं बनता। तो देखिए एक बढ़िया सी टिप है मेरे पास अगर ये कुकीज और अंटशंट खाने की आदत आपकी भी है, क्योंकि भाई जरूरी भी है, काम करते हैं पेट हल्का हो जाता है तो कुछ तो चाहिए ना टमी को, तो पेट को सुखाने की जरूरत नहीं है वेट लॉस करने के नाम पे। देखिए दाल जैसी चीजें अगर आप अपने लंच में बढ़ा दें तो एक तो आपका टमी वहां से फुल रहता है ना, अच्छी दाल बनाइए यार तड़के वाली, और दाल या वेजिटेबल्स आप अपने लंच में अगर बढ़ा दें तो आपका टमी अच्छे से उधर फुल हो जाता, और शाम को जब आपका दिल करे कि यार कॉफी पी रहे हैं स्नैक्स होते साथ में या फिर कॉफी पी रहे हैं कुकीज होती साथ में, तो भाई उस वक्त पे आप कर्ड और फ्रूट्स प्रेफर कर सकते हैं। देखिए कर्ड जो होता है खाने का बेस्ट टाइम होता है, इवनिंग टाइम अगर आप खाएं तो, और या फिर लंच टाइम है ना, आपका आराम से दही जो है वो डाइजेस्ट भी हो जाता है और हैवी नहीं लगता आपको। तो फ्रूट्स और कर्ड आप इंजॉय करें, आपका टमी भी फुल हो जाएगा, आपका वेट भी इंक्रीज नहीं होगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार क्या ही खा लिया है ना, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसी बात पर एक और ट्रैक मेरे साथ इंजॉय कीजिए और इंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रेडियो प्रस्थानी पर आप हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस में, और हम हैं अभी गानों की हैट्रिक के साथ। आज के वो तीन लाजवाब गाने जिनके साथ ये पल खास होने वाला है, और आज के गानों के साथ हम जानने वाले हैं कि कौन से गाने रेडियो प्रस्थानी पर सबसे ज्यादा प्ले होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, वही पुराने गाने हैं या आज कुछ नया है। शुरुआत करते हैं गानों की हैट्रिक की आज के पहले ट्रैक के साथ।

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: जी हाँ, इट हैपेंस में गानों की हैट्रिक, और गानों की हैट्रिक का आज का लास्ट ट्रैक जानने को आप भी जरूर बेताब होंगे। तो चलिए मैं सुनवाती हूँ इस अगले ट्रैक को, आपको मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

कहां कहां से लाते हो तुम तरीके ऐसे, तुम्हें हर बात पे मिल जाते हैं बहाने कैसे। वेलकम बैक इट हैपेंस सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर, जहाँ कुछ लोग बहाने बनाने में बड़े माहिर होते हैं। अच्छा देखिए, उनका जब आपसे मतलब होता है, काम होता है, तब तो वो आपसे एड़ी चोटी का जोर लगा के भी करवा लेते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत हो तो यार वो ऐसा बहाना बोलेंगे ना आपसे कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार मैं इससे कैसे कहूँ आगे कुछ भी। आप खुद ही हार जाते हैं, आप मतलब रिएक्ट ही नहीं करते, आपको लगता है कि यार मैंने कुछ कहा तो गुनाह हो जाएगा, है ना। तो ये बहानेबाज लोग जो हैं वो बड़े बड़े हुनर जानते हैं कि उन्हें किसी का काम ना करना पड़े या किसी के काम ना आना पड़े। वो आपको डायरेक्ट मना नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा बहाना बनाएंगे कि आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, आप उनसे कहेंगे ही नहीं कुछ। ऐसे लोगों को सैल्यूट है और एंजॉय करते हैं उनके नाम भी अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए, इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 FM।

0: देखिए, सारा झगड़ा, सारी मुसीबत टाइम की है। टाइम को लेकर ही दो लोग आपस में लड़ते हैं, टाइम को लेकर ही ब्रेकअप हो जाते हैं। तो देखिए, कभी किसी को लाइफ में आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन कभी किसी को फोर्स मत कीजिएगा कि वो आकर आपको टाइम दे। रीजन क्या है इसके पीछे, मैं समझाती हूँ। आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि यार मुझे वक्त दो, मुझे तुम्हारा वक्त नहीं मिलता। क्या मिलता है इससे? लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हासिल कुछ भी नहीं होता। अगली बार फिर से वही सीन। और मुझे ये बताइए, अगर एक इंसान ने बार बार 10 बार आपके कहने पर एक दिन आपको वक्त दे दिया, तो उसका क्या मतलब है? जिसे आपसे सच में मोहब्बत होगी या जिसके लिए आप सच में इम्पोर्टेंट होंगे, वो बंदा चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, वो आपके लिए वक्त निकालेगा, आपको वक्त देगा, आपको उससे वक्त मांगना नहीं।
1: चर्चावां पिछले 2-3 दिनां तों सोशल मीडिया ते चल रही ने। इस विचाले हुण इन्हां चर्चावां नूं लैके सुनील जाखड़ दा स्पष्ट बयान सामने आया। जाखड़ ने ट्वीट करदिआं साफ कीता है कि उह भाजपा नूं छड्ड के नहीं जा रहे। उन्होंने सोशल मीडिया ते कांग्रेस विच जाण दीआं चर्चावां दा सिरे तों खंडन कर दिता है। सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट च कहा है कि मैं सोशल मीडिया ते कुछ अजिहीआं पोस्टां देखीआं हन जिन्हां विच संकेत दित्ता गया है कि मैं कांग्रेस पार्टी विच दोबारा शामिल हो रहा। उन्होंने कहा है कि मैं ए साफ करना चाहुंदा कि ए खबरां पूरी तरह दे नाल झूठियां, बेबुनियाद अते सच्चाई तो कोहां दूर हन। जाखड़ ने कहा कि मैं भाजपा दे नाल हां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दी अगे वधाई गई सबका साथ सबका विकास दे विचारधारा प्रति वचनबद्ध हां। उधर पटियाला दी सेंट्रल जेल विच बंद बलवंत सिंह राजवाणा ने जेल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक पत्र लिखा है। 16 सितंबर नूं लिखे इस पत्र विच राजवाणा ने अपनी मौत दी सजा संबंधी अपनी रहम दी अपील ते जल्दी फैसला लैण दी बेनती कीती है। राजवाणा ने लिखा है कि वह पिछले 30 सालां तों जेल विच बंद है ते लगभग 20 सालां तों अपनी मौत दी सजा दे फैसले दी उडीक कर रहा है। उसने दावा कीता है कि उसकी फांसी दी सजा संबंधी उसकी अपील लगभग 15 सालां तों केंद्र सरकार कोल लंबित है। राजवाणा ने प्रधानमंत्री नूं सवाल कीता है कि इन्ने लंबे समय तो फैसला क्यों नहीं किया जा रहा। पत्र विच राजवाणा ने श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश पुरब दे मौके ते 2019 विच जारी कीते गए नोटिफिकेशन दा भी हवाला दिता। उसने कहा है कि उसनु अजे तक लागू नहीं कीता गया। उसने सुप्रीम कोर्ट विच केंद्र सरकार द्वारा दायर कीते गए एक हलफनामे दा भी हवाला दिता, जिस विच कहा गया है कि सरकार ने कहा सी कि इस मामले विच फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा लई खतरा पैदा करेगा। राजवाणा ने पत्र विच अपने केस नु कानूनी प्रक्रिया दा भी जिक्र करदिआं कहा है कि 31 जुलाई 2007 नूं अदालत ने उसनूं मौत दी सजा सुनाई, जिसनूं उसने स्वीकार कर लिया। उस तों बाद मार्च 2012 विच चंडीगढ़ सैशन अदालत ने मौत दा वारंट जारी कीता, जिस विच 31 मार्च 2012 नूं उसनूं फांसी दा हुक्म दिता गया। बाद विच राष्ट्रपति नूं उसदी सजा नूं उम्र कैद विच बदलन दी अपील कीती गई अते केंद्र सरकार ने फांसी ते रोक लगा दिती। राजवाणा ने 1984 दी सिख विरोधी हिंसा अते पंजाब दी स्थिति दा वी जिक्र कीता। उसने केंद्र सरकार दीआं नीतियां एजेंसियां ते गंभीर दोष लगाए ते कहा है कि पंजाब विच कोई भी नवी साजिश नहीं रची जानी चाहिए। राजवाणा ने प्रधानमंत्री नूं जल्दी फैसला लैण दी अपील कीती। उसने लिखा है कि वह अपनी आखिरी सांह तक अपनी धरती अते अपने भाईचारे प्रति अपना फर्ज निभाउंदे रहणगे। पत्र दे अंत विच बलवंत सिंह राजवाणा ने लिखा है कि वह केंद्रीय जेल पटियाला तों अपने फैसले दी उडीक कर रहे हन। उधर यूथ अकाली आगू अते सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लई काम करदे विक्रमजीत सिंह कुलार उर्फ विक्की मिडू खेड़ा दा गोलियां मार के कतल करन दे मामले विच वधीक जिला सैशन जज मोहाली दी अदालत ने खालिस्तान लिबरेशन नाल संबंधित धर्मिंदर सिंह गुगनी खिलाफ दोष तय कर दिते हन। अदालत ने जिला अटॉर्नी अते एसएसपी दफ्तर नूं 6 अक्तूबर नूं सरकारी गवाहां नूं तलब करन दे निर्देश दिते। गुगनी इस समय पटियाला जेल विच बंद दस्सिया जा रहा है। इस मामले विच अदालत वल्लों अजय उर्फ लेफ्टी सज्जन उर्फ भोलू अते अनिल लठ तिने शूटरां नूं धारा 302 विच उम्र कैद, धारा 25-54-59 आर्म्स एक्ट विच 7-7 साल की कैद अते धारा 452 विच 1-1 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत वल्लों तिन्हां नूं 2.5-2.5 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है, जबकि अदालत वल्लों सबूतां की घाट कारण गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डाकर अते भुपिंदर सिंह भूपी राणा नूं बरी कर दिता गया, क्योंकि पुलिस अदालत विच यह साबित ही नहीं कर सकी कि उक्त तिन्हां दी विक्की मिडू खेड़ा दे कतल विच सीधे तौर ते कोई शमूलियत है। जानकारी अनुसार इस मामले विच आर्मीनिया दी जेल विच बैठे गौरव उर्फ लकी पटियाल समेत सिद्धू मूसेवाला दे मैनेजर शगनप्रीत सिंह समेत कई मुलजमान की गिरफ्तारी ना होने कारण पुलिस वालों उन्होंने खिलाफ अजे तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन वालों कैनेडा नूं अपना पहला एसोसिएट मैंबर बनाने की पेशकश से तिखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जेकर एक कदम अमरीका खिलाफ दुश्मनी भरी कार्रवाई तहत चुकया गया तो अमरीका यूरोप तो होने वाले व्यापार से भारी टैरिफ लगाएगा और व्यापार पूरी तरह के बंद भी कर सकता है। ट्रंप ने कैनेडा के यूरोपियन यूनियन शामिल होने मुद्दे मजाक करार दिता। उन्होंने कहा है कि जे उन्हां दी नीयत माड़ी है तो अस यूरोप से बहुत उस भारी टैरिफ लगावे तो हो सकता है कि कई चीजा का व्यापार बंद भी कर दीए। इस मगरों ट्रंप ने कैनेडा नूं बहुत माड़ा व्यापारक भाईवाल करार दिता। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खवाजा आसिफ ने कहा है कि साउदी शहर मक्का नेड़े ड्रोन हमले की कोशिश तो बाद इस्लामाबाद मक्का समझौते तहत अपनी जिम्मेवारियां पूरियां करन लई पूरी तरह तैयार रह। वैबसाइट से एक रिपोर्ट अनुसार आसिफ ने बुधवार को न्यूज़ चैनल को दस्या है कि मक्का समझौता साढ़े ते लागू हुंदा है ते असी अपना फर्ज निभावांगे। ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ bisoni@bisoni.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸੋਨੀ 101.1। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आरचे संदेश अलग दराल से बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुक्या जी ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारियां तुहाडे नाल तुहाडियां मेरियां अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद दे मेरी पसंद दे सब दी पसंद दे रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है ते फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होण दा हिसाब रखते हूं ता तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स अते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर अते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जीके अपडेट करना चाहते है क्यों तां हुण मैं तुहानू इहो जिहे गल्लां दसन लगूंगी जानी हैगी है ना, जिन्हां नूं जान के तुसी कहोगे कि सच्ची इस तरह भी हुंदा है। सच्ची हुंदा हुंदा है, दस दिओ उस बारे, पर पहलां तुसी सुन लो एक गीत।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: Back, G. Welcome back. एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होता है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंगे ने जिमें लैंडिंग कास्ट इस विच प्रोडक्शन के खर्चे शामिल होंगे ने जिमें एक्टर्स की फीस क्रू सैट के खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट ते इस विच ओ खर्च आंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं पापी लैगी सुणो।
2: Hey, it's Black Lives.

हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सन ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हूँ। जी मैं तुम्हें पहला दस्या सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट है कि है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप हुंदी है। तो एवरेज फिल्म केड़ी हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कड लैंदी है कि ते मामूली मुनाफा कमाती है कि, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी है कि है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले और ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हाँ जी, तो देखो हुण असली कमाई का सच जानते हैं तो लोग अक्सर लोग समझते हैं कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए है तो बजट 80 करोड़ का है तो फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स से सिनेमा घर मालिकां दे कोल जाता है। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते है। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: सांसों की माला पे समरों में।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वन सनो वन ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई दी। अजकल फिल्मा रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस विच जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होंगी है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले विच एवरेज होंगी है पर इन राइट्स की वजह ना प्रोड्यूसर्स मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: Oh,

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूं। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझिया जाए तो स्लीपर हिट वह फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट, पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते ये फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो

पूरी उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है कि बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि नहीं, बेशक को कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जाना नहीं, तो थानू जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थानू किस तरह की जानकारी तुसी चाहते हैं, क्यों रेडियो बिस्वानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, तो bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आई डी है, सरिया जिहड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडे नाल गल्लबात जरूर करो, बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय Swedish Foods। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमजोर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमजोर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omzorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूँ पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: पर साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। जी हाँ, रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी भाई बहनों को। भाई बहनों का यह त्योहार हर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाए और सेफ बनाए। जी हाँ, सो या इसी के साथ रक्षाबंधन आ गई है और मैं इतना ही कहूंगी कि अपने भाइयों को लूटने का वक्त आ गया है। अगर आपने नहीं लूटा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? लूट लो, जल्दी लूट लो, क्योंकि आज नहीं तो अगले रक्षाबंधन तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है, भाइयों से कुछ निकलवाने के लिए काफी एफर्ट्स लगते हैं। रक्षाबंधन जो है वो खुद ही आ जाता है एफर्टलेसली, जो कि आपको उनसे कुछ निकलवाने में हेल्प कर देता है। सो अच्छा सा गिफ्ट लीजिए, और अगर गिफ्ट नहीं देते हैं तो थोड़ा सा कैश मार लीजिए, और क्या। जी हाँ, इसके साथ रक्षाबंधन का ये त्योहार आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे, यही मैं कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ। और इसी के साथ अब जरा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है सबसे पहले क्या होता है। एक हेल्दी रिचुअल हम प्रैक्टिस करते हैं और वो है लंबी गहरी सांसों वाला रिचुअल, यानी कि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। सबसे पहले हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं आप? हैप्पी फ्राइडे आप सबको मेरी तरफ से। जी हाँ, फ्राइडे का दिन, मस्ती का दिन और फुर्सत का दिन। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा अभी मस्ती शुरू हुई नहीं है, वैसे अभी हम काम कर रहे हैं, अभी शाम होने में वक्त बाकी है और काम होने में भी वक्त बाकी है। चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम मान जाते हैं, पर एक तो चीज आपको माननी पड़ेगी और वो क्या है? वेल, कि वो जो सुखबुगाहट है वीकेंड की, वो शुरू हो गई है आपके अंदर। राइट, अगेन ऐसा ही होता है सबके साथ, आप अकेले नहीं है इसमें। हम सब वीकेंड का इंतजार करते हैं और फ्राइडे हमारे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो तो स्पेशल होते ही हैं, लेकिन साल में एक आध बार ही आते हैं वो। फ्राइडे हर वीक के एंड में आकर आपको सुकून पहुंचाता है। सो फ्राइडे की जो इम्पोर्टेंस है वो कभी भी कम मत कीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत आपको पता ही है कैसे होती है। वेल, एक हेल्दी रिचुअल के साथ हम वो करते हैं, और वो हेल्दी रिचुअल हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि वो हमें प्रिपेयर करता है सारी चीजों के लिए। कोई भी चीज हम शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम हम करना चाहते हैं प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ और अच्छे काम माइंडसेट के साथ, तो ये हेल्दी रिचुअल यानी कि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज हमें वो करने में हेल्प करती है अच्छे से। सो करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रोग्राम की सही मायने में शुरुआत करने का वक्त आ गया है, और वो होती है ऑफ कोर्स एक बढ़िया से गाने के साथ। और वो गाना कौन सा है? वेल, वो है रजवाड़ी ओढ़नी। क्या है ये गाना? अगर आपने कलंक मूवी देखी है तो शायद आपको पता होगा, अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आपको नहीं पता होगा, लेकिन गाना बहुत ही खास है। सुनते हैं इसको, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और फिर होगी और भी बहुत सारी गपशप।

कह दिया है, आई होप आपने सुन लिया है, क्योंकि मेरे दिल ने कहा आपने सुना, ऐसे ही चलता रहेगा कार्यक्रम। जी हाँ, इसके साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तो जरा अब आपको मौसम की जानकारी भी दे दी जाए, क्योंकि भाई क्यों नहीं, आपके पास दो दिन है वीकेंड के और उसमें आपको एंजॉय भी करना है। अब आपको एंजॉय करना है तो आपको बाहर भी निकलना है, और बाहर निकलना है कितना कामयाब हो पाएगा, क्योंकि बात नहीं हो सकती है, ये जानना तो जरूरी है। मौसम के हिसाब से प्लानिंग करना जरूरी है। सबसे पहले 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, और अगर अभी की बात की जाए तो 23.5 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 22.1 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात की बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो आप देख पाएंगे। जी हाँ, 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो रहने वाला है, और एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार। मैंने पहले ही कहा था कि मौसम एकदम खिला खिला रहने वाला है, और गर्मी जो है अब धीरे धीरे थोड़ी सी बढ़ने वाली है, और रेडी रहिए क्योंकि वीकेंड में काफी बढ़ जाएगी, और बारिश के चांसेस नहीं है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए, आज की बात हो गई तो अब सैटरडे और संडे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल की, क्योंकि कल 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने वाला है, मतलब गर्मी फिर से दस्तक देने वाली है। वहीं 5% चांसेस है बारिश होने के, और पूरी तरह से मौसम जो है और सूरज खिला खिला रहने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ संडे की अगर बात की जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ जो है वो 5% चांसेस है बारिश होने के, और अगेन मौसम जो है वो पूरी तरह से खिला खिला रहने वाला है। लेकिन उसके बाद मुझे वीक डेज में जो है मंडे और ट्यूसडे तक, ट्यूसडे से जो है मुझे बारिश होती हुई नजर आ रही है, तो तापमान फिर से गिरने वाला है। लेकिन दो दिन तापमान जो है, दो से तीन दिन तापमान बढ़ा रहेगा, 31, 30 और 29 के बीच में रहने वाला है, तो उसके लिए गियर अप हो जाइए। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग लाइव मेरे अनियार्ड। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं आपकी फरमाइशों की तरफ क्योंकि आज है फ्राइडे, मतलब फ्राइडे है वीकडेज का दिन। अब वीकडेज का दिन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी फरमाइशें आज भी आएंगी। वीकेंड पे जब हम आपको से मिलने आते हैं तब आप अपनी फरमाइशों को हम तक नहीं पहुंचा पाते हो, बहुत कम थोड़ी देर के लिए हम आपसे मिलने आते हैं टॉप 10 हॉट 10 में। लेकिन आज है फ्राइडे और आज इवनिंग वाइब ही है और उसका मतलब यही है कि आज भी आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट +9182888717701। तो उस पर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं अपनी फरमाइश, थोड़ा सा चौगाड़ा हो जाए, नॉट चौगाड़ा बट तेरा हुआ, जी हाँ। अब बट दोनों ही गाने एक ही मूवी के हैं, कैन यू गेस द मूवी नेम।

मिर्ची लगी वो तो ठीक था, पर नानी को मारने की क्या जरूरत थी भाई। गड़बड़ है, ये गलत करा हुआ है इन्होंने इस गाने में, मतलब जिसने भी लिरिक्स लिखे हैं, नानी को मारने की क्या जरूरत थी यार। जी हाँ, इसी के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है प्रोग्राम शुरू हो गया है, आज है फ्राइडे, तो सबसे पहले शुरुआत उसी चीज से करेंगे जो कि आपको काफी पसंद है और जो आपके काम आएगी, प्लानिंग। जो आप मूवीज देख सकते हो इस वीकेंड अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। जी हाँ, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। जी हाँ, क्या नया है क्या पुराना है, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। वेल, अगर आपने स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे अभी तक नहीं देखी है तो मैं कहती हूँ अभी भी ट्राई कर लीजिए, बिकॉज अभी भी आपके पास टाइम है, आप देख सकते हैं उसे। ऑल्दो मैं इतना ही कहूंगी कि पिछले स्पाइडरमैन जो मूवी है उसके मुकाबले ये वाली थोड़ी सी कम अच्छी है, बट द थिंग इज इट इज स्टिल अ स्पाइडरमैन मूवी एंड ये फिर भी लोगों को उतना ही उत्साहित कर रही है जितने की बाकी की करती है। जी हाँ, इसी के साथ स्पाइडरमैन के साथ एक और मूवी जो है वो लगी है, और वो है क्या, गेस करेंगे आप? वेल ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंसीडियस। इंसीडियस भी लगी है, और इंसीडियस के साथ साथ रेजिडेंट ईविल भी लगी हुई है। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा हर बार तुम शुरुआत करती हो जो इंडियन फिल्में होती हैं उनके नामों के साथ, आज तुमने हॉलीवुड से शुरुआत की। वेल, किसी दिन कुछ अलग भी करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज पहले आपको हॉलीवुड मूवीज के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद आपको मैं बताने वाली हूं। तो जैसे इंसीडियस जो है उसका एक और पार्ट आ गया है, अभी भी थिएटर्स में लगा हुआ है, इससे पहले थिएटर्स से उतर जाए आप देख सकते हैं अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं। नई मूवी जो है वो है रेजिडेंट ईविल, जो कि लग चुकी है, और रेजिडेंट ईविल काफी ईविल है इतना मैं आपको बता दूं। इट्स एक्शन हॉरर साइफाई थ्रिलर। आप लोग बोलोगे ये रेजिडेंट ईविल तो हमने पहले भी देखी है, इसमें क्या नया है? वेल, ट्रेलर देखिए आपको खुद ही समझ आ जाएगा, और आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों को फैंटेसी मूवीज, हॉरर, गॉथिक मूवीज पसंद है जस्ट लाइक योर आर्जुन निवेदन, देन दिस इज The chance for you। जी हाँ, इसी के साथ एक और मूवी जो आप देख सकते हो वो कौन सी है? वेल ऑफ कोर्स ओडिसियस की द ओडिसी। अगेन क्रिस्टोफर नॉलन की ये मूवी अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है। कैन यू इमेजिन कितना वक्त हो गया ऐसे थिएटर्स में लगे हुए, और इसे रिलीज हुए 2.5 महीने से ज्यादा, और अभी भी कमाल कर रही है ये मूवी। क्रिस्टोफर नॉलन का नाम ही काफी है मूवी के लगे रहने के लिए थिएटर्स में। जी हाँ, सो अगेन इट्स अ मूवी अबाउट ग्रीक माइथोलॉजिकल चैप्टर। जी हाँ, ग्रीक माइथोलॉजी का एक चैप्टर है जिसमें ट्रोजन वॉर के बाद ओडिसियस जो है वो अपने घर जा रहा है। ट्रोजन वॉर में 10 साल लग जाते हैं, 10 साल उसे घर वापस जाने में लग जाते हैं। घर पे बीवी और बेटा जो है इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार जो है वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ओडिसियस के किंगडम को हथियाने के लिए लोग वहां पर तैयार बैठे हुए हैं। अब ऐसे में ओडिसियस 10 साल बाद घर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, आई एम नॉट गोना टेल यू अबाउट दैट, बट आप जरूर देखिए, क्योंकि मैट डेमन, एन हाथवे, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडेया, रॉबर्ट पैटिंसन, लुपिटा न्यांग, चार्ली थ्रोन, कौन नहीं मिल रहा आपको? बेसिकली क्रिस्टोफर नॉलन का नाम ही काफी है आपको मूवी के सेट पर लाने के लिए, इससे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। मतलब छोटे छोटे पार्ट भी बड़े बड़े स्टार्स ने प्ले किए हैं, दैट्स द पावर ऑफ क्रिस्टोफर नॉलन। तो चलिए, ये कुछ हॉलीवुड मूवीज है जो कि आप देख सकते हैं इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमाघरों में, जिसमें से दो तो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हैं अब, लेकिन दो जो है वो नई है जो आप देख सकते हो। और इसी के साथ इंडियन मूवीज में क्या क्या लगा हुआ, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, लेकिन पहले हम आपको गाना सुनाएंगे एक और बढ़िया सा।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तों भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब। मेरे यानी आज निविया के साथ फ्राइडे का दिन है। मजेदार मौसम है। हाँ थोड़ी सी गर्माहट जो है वो आ गई है लेकिन स्प्रिंग को आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं? जी हाँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए क्या आपने स्प्रिंग में कोई स्प्रिंग एक्टिविटी की? जी आप लोग बोलोगे कि अब स्प्रिंग एक्टिविटी क्या होती है? वेल ऑफकोर्स गार्डनिंग करना। जी हाँ, बागों में निकलना, नेचर में जाना, खूबसूरत नेचर की फोटो खींचना। जी हाँ, ये होती है स्प्रिंग एक्टिविटीज। और तो और पिकनिक मनाना। दिस इज द परफेक्ट वेदर पिकनिक के लिए। अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ तो दिस इज द परफेक्ट वेदर। बाहर निकलिए, इस वीकेंड बाहर निकलिए और जरूर अपने नियर एंड डियर वंस के साथ किसी खूबसूरत सी जगह पर, नेचर से भरी हुई जगह पर पिकनिक मनाने जाइए। चलिए इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि इंडिया की कौन सी मूवीज, यानी कि इंडियन मूवीज जो है वो कौन सी रिलीज हो रही है या जो पहले ही हो गई है, क्या आप देख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन मूवीज थिएटर्स में अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। सबसे पहला तो ऑफकोर्स मेरा रिकमेंडेशन है हनुमान अंश। इससे ज्यादा मैं रिकमेंड किसी मूवी को नहीं करूंगी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये मूवी मैं इसकी सराहना नहीं कर रही हूं, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही हूं, बल्कि पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जिसने भी इस मूवी को देखा है। जी हाँ, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं और ऊपर से इसके पीछे की कहानी भी तो कितनी ज्यादा खास है। जी हाँ, एक ऐसी प्रोड्यूसर जो पहली बार प्रोड्यूसर बनी, एक ऐसा एक्टर जो पहली बार एक्टर बना, और दोनों ने ही कमाल कर दिखाया। जी हाँ, जो एक्टर इस मूवी में काम करने वाला था उसने मूवी छोड़ दी, और जो असिस्टेंट जो कि चाय पानी पूछता था उसी सेट पर, उसी फिल्म के सेट पर, उसको एक्टर बना दिया गया। ऑफ कोर्स 3 ऑडिशन के बाद ऐसा हुआ, जो लोग जो है बैक स्टेज काम किया करते थे उनको ही इस मूवी में लेकर इस मूवी को कंप्लीट किया गया। स्टार्टिंग में ये मूवी चल नहीं रही थी, लेकिन फिर ऐसा वर्ड ऑफ माउथ आया कि लिटरली इसने सारे के सारी वो लिमिट्स क्रॉस कर दी सक्सेस की। जी हाँ, सो अगेन हनुमान अंश आप सबके लिए, एंड ये आपको बताने वाला है उस एक व्यक्ति की स्टोरी के बारे में, उस शख्सियत की स्टोरी के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा खास है बहुत सारे लोगों के लिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जी हाँ, तो हनुमान अंश देखिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। इसके अलावा जो मूवी है जो कि आप देख सकते हैं अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, वो है ऑफकोर्स मिर्जापुर द मूवी। मिर्जापुर द मूवी जो है वो मिर्जापुर की ही कहानी है, या फिर कैसी आपको जो है वो कहानी लगती है मिर्जापुर की, ये तो आप डिसाइड करोगे। क्या आपको वैसे करसिंग पसंद है? वेल, इतना तो मैं कह सकती हूँ कि उसका फैन बेस जो है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगेन अगर आप पहली बार मिर्जापुर देखने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा। आप अपने बच्चों के साथ इसे नहीं देख सकते, आप इसे फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते, आप इसे या तो अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं या तो अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं। दैट टू अगर आपको गालियों से, करसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें काफी कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मिर्जापुर की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी ज्यादा, खतरनाक है, काफी ज्यादा है। सो इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, द्वेंदु शर्मा, अभिषेक बनर्जी, सबके सब बड़े खतरनाक एक्टर्स, रवि किशन भी आपको इसमें मिलने वाले। सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि ये मूवी क्या है। जो सीरीज थी उसी की कास्ट को लेकर इस मूवी को बनाया गया है। इसके अलावा और क्या है? जी हाँ, सोचिए अलावा है वाइब। जी हाँ, वाइब कौन सी मूवी है? ये है कुणाल खेमू की, स्पर्श श्रीवास्तव जिंटा की मूवी, और इसमें क्या होने वाला है? एक्शन एंड कॉमेडी होने वाली है, और वाइब में कितनी वाइब बनने वाली है? आप सोचिए कि मूवी का नाम वाइब है और हमारे प्रोग्राम का भी नाम का, तो ऐसा लग रहा है ज्यादा बात करनी चाहिए। बट मैं इतना कहूंगी कि मूवी हो चुकी है रिलीज आज ही, और प्रीति जिंटा के लिए देख जाइए या फिर पहले ट्रेलर देख और कीजिए कि आप इसे देखना चाहते नहीं। That's about it. इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ।

इतना तो प्रूव हो गया है कि मिलेनियल्स एंड जिलेनियल्स जो है वो लास्ट जनरेशन है ऑफ इनोसेंट किड्स. हाँ, मतलब आजकल वाले जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है. एंड आई कैन प्रूव दैट बाय अ वेरी वेरी वेरी गुड मीम. एंड व्हेन आई से वेरी गुड मीम, बिकॉज ऑफकोर्स ये क्रिएटिविटी आपको कहीं और नहीं देखने को मिलती है बट सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है. आपको पता है जेंजीज कितने खतरनाक है. जेंजीज जो है वो कोई भी जो है अबका दबका नहीं झेलते. एंड व्हेन आई से अबका दबका, मतलब आप उनसे फालतू का काम करवा ही नहीं सकते. दे आर सो अलूफ, दे जस्ट वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू. आप उनसे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम करवाने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी साइकोलॉजिकली और अपनी यू नो व्हाट इसका हवाला देकर आपको रोक देंगे कि यू नो व्हाट मेरे दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है, मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ जाएगी. मिलेनियल्स और जिलेनियल्स तो कभी ऐसा कहते ही नहीं थे. उनके बॉसेस उन्हें जितना काम देते थे बेचारे चुपचाप करके कर देते थे. उनके बॉसेस कहते थे कि टाइम के बाद भी काम करो तो वो भी कर लेते थे. लेकिन आप जेंजीज से ये नहीं करा सकते. जी हाँ, तो कल ही की बात है, सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरे सामने एक बहुत ही फनी मीम आता है और वो मीम ऑफकोर्स एक जेंजी के हवाले से ही आया है. वहां पे लिखा हुआ था कि माई मॉम आस्ट मी टू ऑर्डर समथिंग फॉर द गेस्ट. जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा. माई मॉम आस्ट मी टू ऑर्डर समथिंग फॉर द गेस्ट, आई ऑर्डर्ड एन उबर. जी हाँ, और फिर उसके बाद तो आई वॉज लाइक वॉट आई, मतलब मम्मी बोल रही है कि मेहमानों के लिए कुछ मंगा दो, तो जेंजी बच्चा बोल रहा है कि हाँ हाँ ठीक है ऑर्डर कर दिया मैंने. क्या उबर? अरे उबर में भेजो इनको जल्दी, बस इतना ही खातिरदारी कर सकते हैं हम. जी हाँ, मतलब मिलेनियल्स और जिलेनियल्स और उसके पीछे की जनरेशन कभी भी ऐसा नहीं करती, बट जेंजीज दे कैन लिटरली केपेबल ऑफ डूइंग इट. मतलब लिटरली, मतलब मेहमान आते, हम तो मतलब कोई टॉक्सिक रिश्तेदार आता था तो भी हम सह लेते थे चुपचाप करके. नमस्ते, हां जी, हेलो जी, हाय जी, यू नो उफ, ये हमने कभी उफ नहीं किया. लेकिन ये जो जेंजी लोग हैं ना, ये सब नहीं सहते. टॉक्सिक हो तो टॉक्सिक बोल देंगे आपके चेहरे के ऊपर, ये पक्की बात है. और अगर ऐसा ही कोई रिश्तेदार घर पे आ जाता है तो खाने की चीज नहीं मंगवाएंगे उनके लिए, उबर ऑर्डर करेंगे, उनको वापस भेज देंगे जल्दी जल्दी. या आई मीन दे आर जेंजी, सो दे कैन लिटरली डू एनीथिंग. इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों की दुनिया की तरफ चलने के साथ आपको बहुत सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे। क्या चल रहा है वॉर फ्रंट पे, क्या चल रहा है पॉलिटिकल वर्ल्ड में। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट जो कि ईरान की तरफ से आई है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि मुस्तफा खामेनेई के सलाहकार ने कहा है कि जब तक ट्रंप और नेतन्याहू सत्ता में रहेंगे, हॉर्मूज स्ट्रेट बंद रहेगा। अब इससे ज्यादा बुरी बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि इससे गैस क्राइसिस और ये जो गैस के जितने भी ऑयल और गैस के जितने भी स्टॉक प्राइसेस है, वो बहुत ही बुरे हाल से गिरने वाले हैं। मार्केट्स जो हैं वो गिरने वाली हैं। ये खबर ही, क्योंकि ऐसे तो जब भी थोड़ा बहुत इनका विवाद जो है वो थोड़ा सा धीमा हो रहा था, थोड़ा सा ठंडा हो रहा था, तो इन लोगों को, मार्केट्स को सांस लेने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब स्टेटमेंट के बाद तो उनको नहीं मिलने वाला है ये मौका। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई के राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद बाकिर जोल कदर ने कहा है कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है, उनके देश का हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का इरादा नहीं है। ईरानी समाचार एजेंसियों की ओर से गुरुवार को प्रकाशित एक बयान में जोल कदर ने कहा कि ईरान के आक्रामक दुश्मन की ताकत को तोड़ने और अहंकारी ताकतों की कमर तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाए जाने तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ईरान की ओर से बदले की कार्रवाई का पहला चरण है। जी हाँ, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध या बातचीत के बारे में बार बार और कभी कभी विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान के भीतर इस बात पर मतभेद गहराते जा रहे हैं कि क्या अमेरिका के साथ सैन्य टकराव जारी रखा जाए या बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। देश के कुछ शीर्ष राजनीतिक नेता अमेरिका से इस्लामाबाद समझौते को लागू करने और इसे युद्ध समाप्त करने की एक शर्त के रूप में मान्यता देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे नेताओं में राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीवाफ शामिल हैं। दूसरी ओर आईआरजीसी सैनिकों और कमांडर सहित कट्टरपंथी युद्ध जारी रखने और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने को अमेरिका और इसराइल का सामना करने की अधिक प्रभावी रणनीति बता रहे हैं। इसी बीच बढ़ती महंगाई, आर्थिक प्रतिबंधों और ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों की नौ सैनिक नाकाबंदी ने देश के नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले ईरान रियाल के अवमूल्यन ने लोगों की आर्थिक समस्याओं को और भी बढ़ा दिया। अब ऐसे में क्या होगा, क्या वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोलेंगे या फिर वो इसे अभी भी बंद रखेंगे और इंतजार करेंगे कि ट्रंप कब सत्ता से उतरते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और अमेरिका के ईरान में वॉर क्राइम करने के पर्याप्त सबूत हैं, ये यूएन एक्सपर्ट्स का कहना है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि अमेरिका ने ईरान में किए गए दो हमलों में युद्ध अपराध किए। इन हमलों में कम से कम 177 आम नागरिक मारे गए। ईरान पर स्वतंत्र इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशन की नई रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी में मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल और लामेर्द के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर हुए मिसाइली हमले अंधाधुंध हमले थे। इन हमलों में आम नागरिक मारे गए और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। अमेरिका ने पहले लामेर्द पर हमला करने से इनकार किया था और कहा था कि वह मिनाब में हुई घटना की जांच कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों को विश्वसनीय नहीं मानता। विशेषज्ञों ने यह भी पाया है कि जनवरी में सरकार विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई में ईरानी अधिकारियों ने भी मानवता के खिलाफ अपराध किए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की ओर से हुए हत्याएं सभी 31 यानी 31 प्रांतों में चौंकाने वाले और अभूतपूर्व पैमाने पर हुई। ईरान ने अभी तक इन निष्कर्षों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि वो पहले मानवाधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के आरोपों को खारिज करता रहा है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
5: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
6: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
7: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियाचे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और एक और चीज जो खबरों में बनी हुई है, जो सबसे बड़ी खबर मैं कहूंगी, क्योंकि वो है कि कनाडा ईयू का एसोसिएट मेंबर बनना चाहता था। ईयू ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम ईयू को जो है एक नया मेंबर लाके देंगे और वो है कनाडा। तो कनाडा को ईयू मिल रहा है और ईयू को कनाडा मिल रहा है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी आ गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कनाडा ईयू में जाता है और ईयू कनाडा को अपना एसोसिएट मेंबर बनाता है तो वो ईयू पर बहुत ज्यादा हेफ्टी टैरिफ्स लगाएंगे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि एलो जी ये तो पुरानी धमकी है, निवेश शर्मा कुछ नया बताओ। वेल वेल वेल, ये धमकी वो पहले दे रहे थे लेकिन फिर वो रुक गए थे, लेकिन अब कनाडा के चक्कर में फिर से जो है वो घसीटा जा रहा है ईयू को। लेकिन फिर भी लगता है ईयू को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। जी हाँ, क्योंकि बहुत फायदा हो सकता है अगर कनाडा एसोसिएट मेंबर बनता है ईयू का। सबसे पहले तो ट्रेड जो है वो इजी हो जाएगा, विदाउट टैरिफ वाला हो जाएगा, दोनों तरफ से कोई भी टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कैनेडियंस को यूरो वीजा, जी हाँ, यूरोप का वीजा लेने की जरूरत ना पड़े, जो कि कैनेडियंस बहुत खुश हैं जिसके लिए। जी हाँ, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका जैसा पड़ोसी देश हो तो कहीं ना कहीं तो और अपनी जो है वो बाउंड्री बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। सो ऐसे में मां कॉनी ने कह दिया है कि यू नो व्हाट, आई एम डन विद दिस शिट, आई डोंट वांट टू प्ले विद दिस पर्सन बिकॉज ही इज अ पैटी पर्सन, ही डज नॉट नो द रूल्स ऑफ अ गेम एंड ही जस्ट डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। सो लेट्स जस्ट से कि हमको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ, हम इनके साथ करेंगे ही नहीं। टैरिफ वॉर करनी है, अरे तुम टैरिफ वॉर करोगे कहां से, हम तुमको बेचेंगे ही नहीं सामान। दैट्स व्हाट कनाडा पीएम हैज सेड, एंड उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास एक और नई मार्केट है विच इज ईयू मार्केट, जहां पर हम अपने सामान को बेचेंगे, हम अपने लोगों का ख्याल भी रखेंगे। और ईयू ने भी कह दिया है कि हाँ हाँ, आओ आओ मार्क कॉनी, पधारो हमारे देश। जी हाँ, दैट्स व्हाट दे सेड, बट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी क्या करेगी, लेट्स सी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में नए नए उपकरण आप देखते रहते हो, इस दुनिया में सबसे महंगी महंगी चीजें भी आप देखते रहते हो, और खासकर पिछले कुछ सालों से जो खाने की चीजें हैं उनकी कोई ऐसे कैटेगरीज जो हैं वो अलग अलग लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको ऐसे यूनिकली सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई किया जा सके। जैसे कि 1 लाख की कॉफी जो कि आपको पीने को मिलती है दुबई में लिटरली, और वो गोल्ड प्लेटेड होती है, मतलब उस पे गोल्ड फॉइल जो है वो क्रंचेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, लिटरली 24K गोल्ड वो आपको सर्व करते हैं कॉफी पे। आप लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है, बट कॉफी पीने का काम कॉफी की तरह होना चाहिए ना, मतलब सोना कहां घुसा दिया, सोना पहनो, सोना खाने की जरूरत क्या है। वेल आपको पता ही है ऐसे अजूबों की कमी नहीं है, और ऐसा ही अजूबा अब इंडिया में देखने को मिल रहा है। सो आप लोगों को पता ही है कि कैसे गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन जो है वो चल रही है, और ये जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि गणपति बप्पा को लोग अपने घरों में लेकर आ रहे हैं और फिर उसके बाद जो है उनका विसर्जन किया जाएगा। कुछ ने कर दिया है, कुछ लोग उनको और भी दिन रखने वाले हैं और फिर करने वाले हैं, और ये हमेशा हर साल होता है, लेकिन इस साल एक नई चीज हुई है, और वो भी इसी सेलिब्रेशन को मद्देनजर रखते हुए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि गणपति बप्पा यानी कि लॉर्ड गणेश को चढ़ता है मोदक जब ये सेलिब्रेशन होती है गणेश चतुर्थी की, और वो मोदक जो है वो बहुत ही फेमस है। लेकिन वहीं पर इंडिया में, भारत में, नासिक में एक दुकान है जो कि 24 कैरेट सोने वाला मोदक बेच रही है। जी आप लोग बोलोगे व्हाट, तो वो खाने के लिए, पहनने के लिए, रखने के लिए, किस चीज के लिए? या दैट वॉज द क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में भी आ रहा था, बट द थिंग इज कि ये खाने वाला ही मोदक है। अपेरेंटली इसकी कॉस्ट है 27,000 इंडियन रुपीज। जी हाँ, और ये स्वीट शॉप जो है नासिक में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक गोल्डन मोदक। जी हाँ, इसको कवर किया गया है 24 कैरेट एडिबल गोल्ड में, और इसका प्राइस रखा गया है वूपिंग 27,000 पर केजी। एंड आई वाज लाइक एलो जी, इन्होंने खाने की चीजों में भी अपनी यूनिकियत घुसाने के लिए ना कुछ भी कर दिया, मतलब एक मोदक को मोदक की तरह ट्रीट करो। हाँ, मोदक बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, और मोदक जो है वो खाने वाली चीज है, इसके ऊपर गोल्ड मतलब एडिबल गोल्ड नाम की भी चीज होती है, मुझे तो ये नहीं पता था। मतलब ऑफकोर्स होती है कॉफी वगैरह पे, और जो जितनी भी आपको अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती है उन पर वही डलता है, बट 24,000 kg, ओ माई गॉड, What do I even say? But yeah, गणपति बप्पा यानी कि लॉर्ड गणेश को पसंद है मोदक, so of course बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो 24,000 रुपीज केजी के इस मोदक को जो है वो लेकर जा रहे हैं और अपने घर में भगवान गणेश को चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये चढ़ाएंगे तो उनको आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा। अब आपको लगता है कि सच में ऐसा होता है? वेल, मुझे नहीं पता होता है या नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो थोड़ा कम जो चढ़ाएगा उसको भी उतना ही देते हैं, थोड़ा ज्यादा जो चढ़ाएगा उतना उसको भी उतना ही मिलता है। बट यहां पर लोगों ने हर चीज को कैश करने की पूरी पूरी कोशिश की है, पूरी पूरी कोशिश, मतलब क्या ही कहा जाए। 24,000 रुपीज केजी मोदक, आप चखना चाहोगे ये मोदक? जरूर मुझे बताइएगा। एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हमें इस हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निका के साथ। दोस्तों, वहीं नासा ने स्कैन किया है मून को और उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा क्रेटर, जी हाँ, बहुत बड़ा क्रेटर जिसको अगर मेजर किया जाए तो 730 फीट, अगर फीट्स में देखा जाए तो 730 फीट, और मीटर्स में कहा जाए तो 222 मीटर्स वाइड ये क्रेटर जो है वो देखा गया है चांद पर। अब दूसरे शब्दों में या फिर थोड़ा शेर व शायरी में अगर जाया जाए तो आपने देखा है चांद पे आपको दाग नजर आते हैं। जी हाँ, वो दाग किस चीज के होते हैं? वेल, ऑफ कोर्स वो दाग दाग नहीं है, वो चांद की भूमि पर यानी कि चांद की जो सतह है उस पर जो क्रेटर बने हैं किसी किसी चीज की वजह से, उन क्रेटर्स की वजह से वो दाग हम जब यहां से धरती से चांद को देखते हैं तो वो हमें दाग के रूप में दिखते हैं। अब नासा ने ये कहा है कि ये जो इतना बड़ा क्रेटर है ये चांद पर बना है 2024 में, जी हाँ स्प्रिंग 2024 में। आप लोग बोलोगे कि अच्छा पर ये बना क्यों? वेल, इसके पीछे रीजन है एस्टेरॉयड। ऐसा कहा जा रहा है कि एक एस्टेरॉयड उस वक्त चांद से टकराया था। आप लोग बोलोगे कि 2024 में, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब नासा ने चांद से टकराने वाले किसी भी एस्टेरॉयड के बारे में नहीं बताया। वेल ऑफकोर्स नहीं बताया, इनफैक्ट इसके बारे में उनके द्वारा कोई जानकारी भी नहीं दी गई। लेकिन अब जब वो क्रेटर फॉर्म हो गया है तब उन्हें पता चल रहा है कि ओ एक एस्टेरॉयड आया था और वो अपेरेंटली टकराया था चांद से और उसकी वजह से इतना बड़ा क्रेटर जो है वो पड़ा है। इनफैक्ट अब तो वो इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं इस क्रेटर से कि वो ये भी कह रहे हैं कि इट्स अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट। मतलब एक एस्टेरॉयड जाके चांद से टकराया और फिर उसके बाद उसने एक क्रेटर बनाया जो कि लिटरली 222 मीटर वाइड है, मतलब इतना बड़ा है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम यहां से चांद की तरफ देखेंगे तो वो हमें दाग के रूप में देखने को मिलेगा भी। जी हाँ, चांद पे दाग नहीं है लेकिन चांद की सतह पर जो क्रेटर बने हुए हैं किन्हीं किन्हीं वजह से वो हमें दाग की तरह दिखते हैं चांद की सतह पर। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि नासा ढीला पड़ गया है। वेल, नासा सच में ढीला पड़ गया है क्योंकि है कि नासा हमें जो चीजें दिखाने की कोशिश करता है और बिलीव करवाने की कोशिश करता है वो कभी कभी सच नहीं भी होती है। लाइक आज भी मैं कहूंगी कि मून लैंडिंग जो है वो झूठी ही थी, और ये मैं नहीं कह रही हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं। और इनफैक्ट उसके बाद ये मून पर दोबारा क्यों नहीं लैंड कर पाए ये भी लोग पूछते हैं। बट द थिंग इज कि इसके बारे में नासा कोई भी जवाब नहीं देता। एंड ऐसा भी कहते हैं कि जो अल्जीरिया है वहां पर उसकी जो सतह है वो बिल्कुल मार्स जैसी दिखती है और वहां पर उनके ड्रोन्स जो है वो घूम रहे होते हैं, लेकिन नासा हमें ये दिखाता है कि ये तो मार्स पे घूम रहा है। सो ऑफकोर्स ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है। बट द थिंग इज कि ये क्रेटर जो है वो एकदम असली है और ये क्रेटर जो है अब नासा ने रिपोर्ट किया है जो कि स्प्रिंग 2024 में फॉर्म हुआ था एक एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से। आई वंडर कितना बड़ा एस्टेरॉयड वो होगा। और अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि कोई एस्टेरॉयड धरती से भी टकरा सकता है या नहीं? वेल, इसका जवाब मैं काफी बार आपको दे चुकी हूँ, ऑफकोर्स टकरा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई भी सीन हमें नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा, निव्या हमें नहीं लगा था ये इतनी जल्दी हो जाएगा। वेल ऑफ कोर्स आपको नहीं लगा था, आपको क्या, मुझे भी नहीं लगा था। चाइना ने एक रोबोट अनवेल किया है। जी हाँ, चाइना की एक कंपनी है जो कि है यूनिट्री रोबोटिक्स, उन्होंने ऑफिशियली अनवेल किया है अपने एक रोबोट को जिसका नाम उन्होंने रखा है GD01, द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोडक्शन रेडी मैन्ड ट्रांसफॉर्मेबल मैका। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि व्हाट डज दैट मीन। वेल, ये एक रोबोट है जिसमें पायलट बैठ सकता है और ये रोबोट जो है वो पहले दो टांगों पर चल सकता है, ये लिटरली दीवारों को तोड़ सकता है, और फिर अगर आप चाहते हो कि ये और ज्यादा अच्छे से थोड़ा जल्दी चले तो ये चार पैरों पर आपको ट्रैवल भी करवा सकता है। आप लोग बोलोगे व्हाट, या आपने बहुत पहले ट्रांसफॉर्मर्स देखा था या नहीं देखा था? जी हाँ, पावर रेंजर्स देखा था या नहीं देखा था? आपने बचपन में ये कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर देखा होगा। आपको लगता था कि कब ऐसा रियल में होगा, मतलब कब होगा जब हम भी इस चीज का पार्ट बन पाएंगे, हमारे पास भी ऐसी चीज होगी। आई थिंक वो फ्यूचर अब दूर नहीं है, वो फ्यूचर अब प्रेजेंट बनने वाला है, क्योंकि सच में चाइना की इस रोबोटिक कंपनी ने वो कर दिखाया है। अब मैं एक ही चीज यहां पर कहना चाहूंगी कि ये रोबोट जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और ये रोबोट जो है वो अभी स्टार्टिंग है। ऑल्दो इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और ये आईपीओ के लिए भी पुश कर रहे हैं, बट द थिंग जो कि हाईलाइट है वो है इसका प्राइस, जो कि सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट्स $574,000। मतलब अगर किसी को ये रोबोट खरीदना है तो उसे $574,000 जो है वो खरीदने जो है वो ऑफ कोर्स खर्च करने पड़ेंगे और इसको खरीदना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है आराम से बंदा जो है वो बैठ सकता है, पायलट बैठ सकता है, इसको ऑपरेट कर सकता है। इट्स लाइक अ व्हीकल, लेकिन इट कैन डू मेनी थिंग्स जो कि एक व्हीकल नहीं कर सकता। लाइक लिटरली इट कैन पंच द वॉल्स, मतलब दीवारें तोड़ सकता है, और फिर उसके बाद जो है दो पैरों से चार पैरों पे चल सकता है, भाग भी सकता है, और तो और अगर आपके सामने कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मार भी सकता है। या इट इज टोटली केपेबल ऑफ डूइंग इट। आप लोग बोलोगे कि ये तो खतरनाक चीज है, मतलब ऐसी चीजें अलाउ कौन कर रहा है? वेल, जिन लोगों ने स्पेस में पहुंचा दिए हथियार, आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें वो नहीं बनाएंगे और ऐसी चीजों को कोई ब्लॉक करेगा? जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका वजन कितना है, मतलब कितना बड़ा है। वेल, पायलट के साथ इसका वजन जो है वो ऑलमोस्ट 500 किलोग्राम्स के जो है करीब होगा। 500 किलोग्राम का ये रोबोट होगा, इसमें पायलट बैठ सकता है, मतलब बंदा जो है वो बैठ सकता है इसके अंदर, और फिर उसके बाद सारी की सारी हरकत जो है वो कर सकता है। $574,000 से इसका प्राइसिंग स्टार्ट है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग प्राइस। अगर आपको इसमें और अच्छा रोबोट लेना है तो फिर आपको और पैसे खर्चने पड़ेंगे। आप लोग बोलोगे कि अरे ऐसी बात नहीं है, मतलब चार पैरों का काम हमारी गाड़ी कर रही है और दो पैरों का काम हम खुद कर रहे हैं, और दीवार तोड़नी होगी तो हम किसी को हायर कर लेंगे, रोबोट लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है हमें यही करना चाहिए, बट देर आर पीपल जो कि इन चीजों को लेने का सपना बहुत वक्त से देख रहे हैं, सो मुझे पता है कि वो जरूर लेंगे। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की शुरुआती गाना।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद देने का। आप लोग बोलोगे कि इस वाले सेगमेंट में जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं तो कोई पुरानी एक्ट्रेस है जिनके बारे में निव्या शर्मा बात कर रही है। वेल ऑफ कोर्स यू आर राइट, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आज भी उतनी ही खूबसूरत है, आज भी उतनी ही ग्रेसफुल है जितनी कि वो पहले हुआ करती थी, आज भी उनकी एक्टिंग में उतना ही दम है जितना पहले हुआ करता था। मैं बात कर रही हूँ नॉन अदर देन शबाना आजमी जी की। जी हाँ, आज है उनका जन्मदिन, तो सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद शबाना जी आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से। हम इतना ही कहेंगे कि वी लव यू, आपके लिए साल बहुत अच्छा रहे, हेल्दी आप रहें और ऐसे ही अपनी एक्टिंग का जादू जो है वो चलाती रहे, क्योंकि सच में आपके फैंस आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट यू नो वॉट, वट मेक शबाना आजमी सो स्पेशल इज नॉट जस्ट हर एक्टिंग बट हर ह्यूमिलिटी, बिकॉज द थिंग्स That she does for everyone. मतलब उनकी charitable programs जो हैं वो इतने ज्यादा खास हैं, वो काम करती हैं charities के लिए, वो काम करती हैं NGOs के लिए, और अगर किसी को भी अपनी आवाज उठाने की जरूरत होती है film industry से भी, तो भी शबाना आजमी उनको back करती हैं, and that's how शबाना आजमी फॉर अस। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट यू डू फॉर पीपल, एंड जन्मदिन की अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और ये गाना अब आप सबके लिए मेरी तरफ से।

कुछ गाने ना आपके दिलों के उन तारों को छेड़ देते हैं जो कि आपने काफी वक्त से छेड़े ना हो या फिर किसी अलमारी में बंद करके रख दिया हो, और ये गाना उनमें से एक है। मतलब ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, भाई हम तो हुए पर्दे, यही तो हुआ करता था पहले, है ना, यही तो होता था। जी हाँ, बट अब टाइम चेंज हो गया, अब दुनिया बदल गई है, एंड आई एम ग्लैड अब ऐसा नहीं होता है। लड़कियां मतलब ऐसे अब अपने घरवार को नहीं भूलती, अपने माता पिता को नहीं भूलना पड़ता जैसे पहले होता था। पहले का जमाना अच्छा भी था लेकिन किन्हीं मामलों में थोड़ा गड़बड़ भी था। दोस्तों, इसी के साथ शबाना आजमी का जन्मदिन है आज, तो आपको बताते हैं कि क्या क्या खास है उनकी जिंदगी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि शबाना आजमी एक बहुत ही अच्छी और रुतबे वाली फैमिली से आती थी। जी हाँ, उनके पिता कैफी आजमी एक बहुत ही बड़ी कवि थे। जी हाँ, और उनकी माँ शौकत आजमी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस। जी हाँ, वहां पर जन्म हुआ शबाना आजमी का, और उनकी एक बहन भी है। शबाना आजमी जब छोटी थी तो उनको मुन्नी कहकर पुकारा जाता था। जी हाँ, और बचपन से ही उन्होंने देखा था अपने आजू बाजू पूरे फिल्मी कलाकारों को और फिल्मों को बनते हुए, तो फिल्मों में काम करने की चाहत बचपन से ही उनके अंदर आ गई थी। फिर आया वक्त 1974 का, यानी कि 1974 का। 1974 में उनको फिल्म मिली पहली अंकुर। जी हाँ, और ये फिल्म उनको मिली तो सही लेकिन इस फिल्म के लिए वो पहली चॉइस नहीं थी। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ये पिक्चर ऑफर हुई थी, और फिर उसके बाद जब सबने मना कर दिया था इस पिक्चर को करने के लिए, तो शबाना आजमी ने इस पिक्चर को किया और वैसे ही कदम रखा इस फिल्मी दुनिया में, और सबको बताया कि कैसे अच्छी एक्टिंग सबको अपना कायल बना सकती है। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, अगेन शबाना आजमी की बात हो रही है तो उन्हीं के पिक्चर का गाना फकीरा का।

जी हाँ दोस्तों, शबाना आजमी की जब भी बात होती है ना, तो एक चीज हमेशा हमेशा मैंने जो है वो गौर किया है जिस चीज पर, वो है उनकी बोल्डनेस। जी हाँ, एंड व्हेन आई से बोल्डनेस, बोल्डनेस इज नॉट अबाउट द क्लोथ्स, बोल्डनेस के उनके ख्याल कितने बोल्ड रहे हैं हमेशा से, कितने मॉडर्न रहे हैं। जी हाँ, अब जिन लोगों को नहीं पता है, जावेद अख्तर के साथ उनका जब रिश्ता शुरू हुआ था तो फैमिली उनकी अगेंस्ट थी, उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि जावेद अख्तर से वो शादी करें, लेकिन वो जावेद अख्तर के प्यार में इतनी बुरी तरह से पड़ गई थी कि वो कहती बस मुझे ना, मुझे बस इसी इंसान से शादी करनी है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि पहले पहले जावेद अख्तर शबाना आजमी के लिए बहुत कुछ लिखा करते थे, बहुत कुछ लिटरली, लेकिन फिर उसके बाद जब एक कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया कि जावेद अख्तर इतने जबरदस्त शायर हैं, आपके लिए क्या क्या लिखते हैं, जी हाँ, तो शबाना आजमी हंसते हुए बोलती हैं कि हाँ ये बाकी सबके लिए लिखते हैं बट मेरे लिए ही नहीं लिखते हैं, आपको जितना रोमांटिक ये इंसान दिखता है उतना रोमांटिक ये है नहीं। जी हाँ, तो जावेद अख्तर बहुत ही हंस के कहते हैं सामने से कि अच्छा तुम खुद सोचो कि एक जिमनास्टिक करने वाले बंदे को तुम कहो कि घर में भी तुम जिमनास्टिक करो, जी हाँ, अब घर वाले भी बोलेंगे कि बाहर भी तुम जिमनास्टिक करते हो, घर में भी तुम जिमनास्टिक करो, कैसा लगेगा उस इंसान को। और वहां पर सबके सब जो है वो हंसने लग गए। इनफैक्ट शबाना आजमी इतनी ज्यादा बोल रही हैं कि उन्होंने लिटरली सबको चौंका दिया था जब रॉकी की रानी में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ वो प्यारा सा किस सीन भी दिया। जी हाँ, मतलब उस उम्र में किस एक्टर को आपने किस सीन देते हुए देखा था। अब धर्मेंद्र ने भी वो किया, शबाना आजमी ने भी किया, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखो डायरेक्टर की डिमांड थी और हमें लगा इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सो वी डिड इट एंड इट वॉज लाइक दैट। मतलब आप खुद सोचिए, कोई भी और एक्ट्रेस होती उस एज में या एक्टर होता तो शायद वो ऐसा ना करते, वो कहते कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं कर पाएंगे, बट बिकॉज वो अपने काम की इतनी रिस्पेक्ट करती आई हैं और उन्हें लगता है कि चीजें जो हैं वो हम ऐसे ही उनको तूल देते रहते हैं, हमें उन चीजों को, उन्हीं चीजों को तूल देना चाहिए जो कि बनती हैं, ऐसे नहीं कुछ भी। जो हाँ, मतलब आप खुद सोचिए, वो बोलने जिस किरदार के साथ उन्होंने उस कैरेक्टर को प्ले किया और इतने वक्त बाद भी जब उन्होंने फिर से एंट्री मारी, तो क्या ही एंट्री मारी। अभी कुछ वक्त पहले उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी बंटवारा, जिसकी तारीफ बहुत ज्यादा हुई, उनमें उनके किरदार की बहुत ज्यादा तारीफ हुई, और ऐसा भी कहा गया कि मूवी उनको अच्छी नहीं लगी लेकिन आपका किरदार हमें बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल टॉप 10 हॉट 10 में, तो बस इजाजत दीजिए हमें, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, और इवनिंग वाइब में मुलाकात होगी मंडे को। ये रहा आप सबके लिए आखिरी गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit, one of the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। डेविस कप मुकाबले ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे, जी हां, ब्रिस्बेन टेनिस फैंस के लिए बड़ी खबर है। आगामी डेविस कप ड्रॉ का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। एलेक्स डी मिनॉर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के अपने होम ग्राउंड पर मैच खेलेगा। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड सुधार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 8वां स्थान हासिल किया है। इसके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम का अमेरिकी दौरा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस महीने के अंत में अमेरिका दौरे पर जाएंगे। वे कैलिफोर्निया में एप्पल के मुख्यालय में मुलाकात करेंगे और फिर न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेंगे। वहीं एचएमएस कोलस नौसेना अभ्यास से वापस लौटा। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का जहाज एचएमएस कोलस 60 डेज के एक्सरसाइज पैसिफिक पार्टनरशिप 2026 अभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा करके ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आया है। इसके साथ ब्रिस्बेन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी। ब्रिस्बेन शहर में आगामी बड़े स्पोर्ट्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि लोकल निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वहीं साउथ चाइना सी में संयुक्त नौसैनिक गश्त। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाजों ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी नौसेना के साथ गश्त में भाग लिया। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल तैयार। भारत के खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए 503 एथलीट्स की टीम को मंजूरी दे दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों को सफलता। उधमपुर के मजालता इलाके में रात भर चले एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं आईफोन 18 की बिक्री भारत में शुरू। एप्पल के नए आईफोन 18 की बिक्री आज से भारत में आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। सुबह से ही मुंबई और दिल्ली के एप्पल स्टोर्स के बाहर फैंस की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। वहीं एशिया के नए सबसे अमीर शख्स बने जांग यिमिंग। जी हां, टिकटॉक के फाउंडर जांग यिमिंग ने नेटवर्थ के मामले में बड़ा उछाल हासिल करते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब अपने नाम कर लिया है। उनकी कुल संपत्ति $105 बिलियन के पास पहुंच गई है। वहीं आईएसबी बना दुनिया का 5th बेस्ट बी स्कूल। लिंक्डइन के टॉप एमबीए प्रोग्राम्स 2026 की ग्लोबल लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को दुनिया में 5वां स्थान मिला है। वहीं महाराष्ट्र में किसानों के लिए राहत की मांग। महाराष्ट्र के सूखे से प्रभावित इलाकों को लेकर किसानों की मदद की मांग तेज हो गई है। राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों में प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की सीधी वित्तीय सहायता देने की अपील की गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बड़ी रक्षा डील। अमेरिका ने सऊदी अरब को अपने सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट्स बेचने की बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। यह रक्षा समझौता लगभग $24 से $30 बिलियन का बताया जा रहा है। वहीं इंडोनेशिया में जावा सागर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के जावा सागर में पिछले सप्ताहांत पलटे जहाज के रेस्क्यू ऑपरेशन में आज बड़ी तेजी आई है। गोताखोर और नौसेना की टीम 129 लापता लोगों की तलाश के लिए डूबे हुए जहाज का सीधा करने में जुटी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नई माइग्रेशन पॉलिसी का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश में विदेशी छात्रों और वर्क हॉलीडे वालों के लिए नया माइग्रेशन नियम जारी किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि आसियान देशों के छात्रों पर परिवार लाने का बैन लागू नहीं होगा। वहीं प्रिंस हैरी की ब्रिटेन वापसी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी सालों बाद पहली बार अपने देश में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं स्पेसएक्स और एआई डेटा पर नई चर्चा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए बंद हो चुके स्टार्टअप से ऑपरेशनल डेटा खरीदने पर विचार कर रही है। वहीं ईरान पर यूएन प्रतिबंधों को लेकर मतभेद। संयुक्त राष्ट्र में रूस और चीन ने ईरान पर स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले पैनल की समय सीमा समाप्त कर दी है, जिससे पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से हराया। जी हाँ, नई दिल्ली में खेले गए तीसरे T20 मैच में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 127 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए थे और जवाब में अफगानिस्तान को महज 94 रनों पर समेटकर सीरीज पर क्लीन स्वीप कर लिया। वहीं वुमेन्स क्रिकेट टीम का एशियन गेम्स में पहला मुकाबला। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज एशियन गेम 2026 के क्वार्टर फाइनल मैच में मेजबान जापान का सामना करने मैदान में उतर रही है। वहीं डेविस कप का ऐलान। टेनिस की दुनिया से बड़ी खबर, एलेक्स डी मिनॉर आगामी डेविस कप मुकाबलों में टीम का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे। वहीं हायरॉक्स चैंपियनशिप में विवाद। चीन में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय हायरॉक्स रेस में एक बड़ा विवाद सामने आया है। विजेता एथलीट को रेस के दौरान अयोग्य घोषित कर दिए जाने के बाद उन्हें खेल से दूरी बनाने का ऐलान किया। इसके साथ चैंपियंस लीग फुटबॉल में बड़े उलटफेर। यूरोपीय चैंपियंस लीग के मुकाबलों में लगातार रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं, जहां टॉप क्लब्स अगले दौर में जगह बनाने के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं फॉर्मूला वन रेसिंग अपडेट। आगामी ग्रैंड प्रिक्स रेस के लिए सभी टीमों ने अपनी नई कार ट्यूनिंग और ड्राइवर स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे इस वीकेंड हाई स्पीड एक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी वन।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।

0: or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आयरन फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश शलक दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुके है जी ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़िया मेरिया अपनिया सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद दे मेरी पसंद दे सब दी पसंद दे रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है ते फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 साडे फेसबुक पेज है जी bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आई टी है जरिए जेड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है वो अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो फिल्मा दे हिट या फ्लॉप होने का हिसाब रखते हो तुहानू इस नाल जुड़े कुछ टर्म्स ते इसका गणित जरूर पता होना है, जिवें ब्लॉकबस्टर ते ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच की फर्क हुंदा है, स्लीपर हिट की हुंदा है, नहीं पता तो चलो इसे ते चर्चा कर लेने। तो देखो जेकर तुहाडे दिमाग विच फिल्मी कीड़ा हैगा है तां बॉक्स ऑफिस दे नाल जुड़े सवाल परेशान करते होणगे, जिवें ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच फर्क, फुटफॉल की हुंदा है, किवें तय हुंदा है कि फिल्म हिट है या एवरेज है, स्लीपर हिट की हुंदी है, वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह। जेकर तुसी भी अपना फिल्मी जी के अपडेट करना चाहते हैं क्यों तो हुण मैं थोनू इहो जिहे गल्लां दसण लगूंगी।

0: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो जी आज संदेश अलग दिनाल बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, इस विच ओ खर्चा हुंदा है जो किसी मूवी की मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, यही दसदे आं। पप्पी लैगी सुणो।
1: It's black light.

जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वानी वन सन ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिन आल से बने हुए हूँ। जी मैं तुम्हें पहला दस्या सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट हैगी है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ विच बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप हुंदी है। तो एवरेज फिल्म केड़ी हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ लैंदी है कि ते मामूली मुनाफा कमाती है, यानी कि 1 करोड़ विच बनी हैगी है तो 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो हिट हुंदी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे,

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसौनी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हाँ जी, तो देखो हुण असली कमाई का सच जानते हैं तो लोग अक्सर लोग समझते हैं कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए है तो बजट 80 करोड़ का है तो फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स से सिनेमा घर मालिकां दे कोल जाता है। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते है। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ।

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थिएटरिकल कमाई की। अजकल फिल्मा रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होंगी है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है पर इन्होंने राइट्स की वजह न प्रोड्यूसर मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Oh, if it's love, then you can keep it.
5: I did it all.
4: Cause if it's love, then I don't need.

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 जी आर जी संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो फुटबॉल क्यों हुंदा है, इस दे विच महत्वपूर्ण इस बारे भी गल कर लेने, इंपोर्टेंट क्यों हुंदा है। तो कमाई तो इलावा ना एक होर अहम पैमाना हुंदा है, वो ही हुंदा है फुटफॉल, यानी कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदी है की है। मूवी दे टिकट अजकल महंगे हो गए ने, इसलिए 100 करोड़ रुपए कमाना सौखा हो गया। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनन दे लई ए भी देखा जाता है कि किन्ने लोगों ने टिकट खरीदे है ने, ते मूवी देखने लई लोग गए है ने। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मा वो हुंदियां ने जिन्हां दे विच फुटफॉल भी ज्यादा हुंदी है, जिवें शोले। हुण तुहानू है कौन अते हम आपके है कौन ते धुरंधर भी इस कैटेगरी दे विच है शोले तो इलावा।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हूं। जी मैं वर्ड की गल कर रही हूं, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्लीपर हिट वह फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ के दम से यह फिल्म रफ्तार फड़ती है तो फाइनली बॉक्स ऑफिस से ब्लॉकबस्टर साबित होती है। जिवें सैयारा, कांतारा, बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन।
1: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

उम्मीद हैगी है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है कि ने, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर है कि ने, बेशक कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे या नहीं, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते हैं क्यों। रेडियो बिस्वानी 107.1 एफएम फेसबुक पेज है जी, तो bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आईडी है। सरिया जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: जवानी दीवानी, थोड़ी आग है थोड़ा सा पानी।
1: बिच्छू ओ बिच्छू, ये बिच्छू मुझे साथ खाएगा।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: आप लोग सुन रहे हैं गीत युग के प्यार भरे

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध।
2: बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी।

0: ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन।

0: एंटरटेनमेंट निखार जुनेजा अ जर्नी विद इन एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: मैं निकला

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं?
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jinu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमक प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम समाप्त।

जी मित्रों, आज 19 तारीख है और 19 तारीख के साथ साथ 6:32 हो रहे हैं और अब हम संगीत सरगम नामक कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम मौसम की खबर आपके लिए पेश करते हैं और मौसम की खबरों में जो हमें मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने प्रदान किए हैं उसके अनुसार 5:40 पर ब्रिस्बेन में सूर्य उदय हुआ है और 5:40 पर सूर्यास्त होगा। वायु की रफ्तार जो है वह 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अनुमान किया जा रहा है। पूरे साउथ ईस्ट में आज धूप निकलेगी और 30 रहेगा दिन में ब्रिस्बेन में, रात्रि को 12। इप्सविच में 32 रहेगा दिन में, रात्रि को 9, हवा की रफ्तार 13। और सनशाइन कोस्ट में 23 दिन में, रात्रि को 13, हवा की रफ्तार 18। लेकिन गोल्ड कोस्ट में 27 दिन में, रात्रि को 12, हवा की रफ्तार 11। और आगे बढ़ते हैं, फिजी द्वीप ले चलते हैं। सर्वप्रथम नेंडी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, आपको मालूम है हवाई अड्डा। यहां पर आकाश पर घटा छाई हुई है, 25 रहेगा दिन में, रात्रि को 21, हवा की रफ्तार 24। और 6:03 पर सूर्य उदय हुआ है और 6:05 पर सूर्य अस्त होगा। लंबा समय हल्की बारिश होगी, 27 दिन में, रात्रि को 22, हवा की रफ्तार 21। और सुबह में आकाश पर घटा छाई हुई है, 23 दिन में, रात्रि को 21, हवा की रफ्तार 24। ओकलैंड न्यूजीलैंड ले चलते हैं, जहां पर 6:06 सूर्य उदय हुआ है, 6:14 पर सूर्य अस्त होगा और आकाश पर घटा छाई रहेगी, 16 दिन में, रात्रि को 13, हवा की रफ्तार 32। और वेलिंगटन में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, 14 दिन में, रात्रि को 7, हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मुंबई, अमृतसर, नई दिल्ली में धूप निकलेगी, 30 दिन में, रात्रि को 26 मुंबई में और हवा की रफ्तार 13। अमृतसर में 34 मैक्सिमम, मिनिमम 23, विंड स्पीड 8। न्यू दिल्ली वेरी हॉट, 35 ड्यूरिंग द डे, नाइट 24, 8 विंड स्पीड। और 6:06 पर सूर्य उदय होगा और 6:23 पर सूर्य अस्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर। और आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम प्रोग्राम का लुत्फ ले रहे हैं। और याद रहे, हमारा स्टूडियो का नंबर है 3279-1701 और मोबाइल नंबर मेरा है 0411-127-035। और मित्रों, सप्ताह आया, सप्ताह चला गया, बहुत कुछ हुआ, मौसम भी अलग अलग था। जो अनुमान किए थे मौसमी दफ्तर वालों ने, उस तरह से बारिश तो हुई नहीं, सूखा है, बहुत सूखा है जगह जगह पर। और क्या करें, बस आपको याद करते हैं कि आपका जो ये सप्ताहांत आया है बहुत खुशियां लेकर आया होगा। बच्चों का छुट्टी भी आ चुकी है, कुछ लोग शायद यहाँ वहाँ घूमने फिरने के लिए निकलेंगे और कुछ लोग विदेश से ब्रिस्बेन आएंगे या ऑस्ट्रेलिया आएंगे। तो अब जो भी करें, यहाँ भी जाएं, अच्छी तरह से सुरक्षा अपना रखें और अच्छी तरह से सफलतापूर्वक जो करना वो करें और फिर वापस घर आ जाएं। तो चलो आगे बढ़ते हैं पहला गीत के साथ। आज का पहला गीत जो है वो मैं आपके लिए फिल्म कोई आपसा से लिया हूँ। सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है। आगे उदित जी और श्रेया घोषाल सुनाएंगे।

जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और खुशी की बात है, सुबह सुबह उठ जाते हैं लोग। अब देखो गंगा जी निकल पड़े हैं अपने काम से और अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया गाना है और सब कुछ बढ़िया है और साथ में उसको भली भांति रेडियो सुनाई दे रही है, तो क्या और करें आगे। और जो दूसरा गाना है बहुत खूबसूरत सा गीत है गंगा भाई, इस गीत में मैं आपको शामिल कर रहा हूँ। गीत के जो बोल हैं ऐसा है हमारे जीवन से जैसे ताल्लुक रखता है। जावेद अली साहब हैं और साधना सरगम जी हैं इसमें, ये सुर प्रदान कर रहे हैं। और चलो आगे नहीं कहूँगा, लेकिन दिल के छू लेने वाला गाना है ये।

0: अमित रॉय जो गीत में लिया था फिल्म करतूत का गीत था, बहुत प्यारा गीत, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए चलें विज्ञापन की तरफ। तो शुरू करते हैं प्योर देसी घी का खबर, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well-known for its quality service and reasonable prices.
0: दोस्तों इस समय 14 मिनट रगे हैं 7 बजने में और आगे बढ़ते हुए अगला जो गीत है इसे अदा कर रहे हैं सोनू निगम जी और साथ दे रही हैं सुनिधि चौहान, और इसे मैंने लिया हूँ फिल्म दादी की शादी से।

0: जी मित्रों, कैसे लगा? दादी की शादी था फिल्म का नाम। और आगे बढ़ते हैं, कुछ विज्ञापन भी लेता चलूँ, दो विज्ञापन और बजाऊंगा अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चले, रे 16 का खबर पहले सुनते हैं।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: अमित रॉय इस समय 9 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, और आपको बतला दूं या दिला दूं कि राव जी से हम कुछ बातें करेंगे 7:15 के आसपास। फिलहाल चलते हैं, क्या बात है, क्या गाना है भाई, लड़की पटा ले बबुआ। और ये फिल्म में गोविंदा साहब दिव्या दत्ता के सामने अभिनय कर रहे हैं, और गीत को जो सुर प्रदान किए हैं विनोद राठौड़ जी हैं, और साथ दे रही हैं अलगा याग्निक जी।
2: इश्क है वो मथुरा का पेड़ा,

0: क्या बात है मित्रों, कैसे लगा? बहुत ही बढ़िया गाना था, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप रेडियो ब्रिजवाणी सुन रहे हैं, मैं हूँ परमानंद, है संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। अगला गीत जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो भी बड़ा ही खूबसूरत दो गाना है। सोनू निगम साहब हैं और इस बार हैं उनके साथ साधना सरगम जी, और ये सुनाएंगे आपको, हमको मालूम है इश्क। क्या बात है, दिल को छू लेने वाला गाना ये भी है मित्रों, सुनिए आनंद लीजिए।
1: Just got bigger.
0: ये विज्ञापन के बाद हम इसे बजाएंगे और आप परमानंद के साथ हैं संगीत सरगम प्रोग्राम के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत खूबसूरती से बीतेगा।
2: खुश नसीब है मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब है, अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं लेकिन करीब है।

0: मित्रों, इस गीत के साथ साथ ठीक 7 बज रहे हैं और आप परमानंद के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे प्रोग्राम को कई लोग सुन रहे हैं, इंकटे भाई आप भी सुन रहे हैं और आप हमेशा सुनते रहते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका दिन अच्छी तरह से बीत रहा होगा और मालिक की कृपा हमेशा बनी रहे। कुछ प्यारे प्यारे गाने हैं, अभी अब पुराने गीतों की तरफ हम आपको ले चलेंगे और पुराने गीतों में आप जानते हैं मैं कुछ ऐसे चुने हुए गीतों को लेकर आता हूँ और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती कि जो गीत हैं गीत के द्वारा हम संदेशा लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों तक क्या कि जितने भी हमारे लोग ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको कोशिश करके उनके एक यात्रा कराते हैं और साथ में उनको मैं भी कोशिश करते हैं कि भाई जीवन किस तरह से है, जीवन ये सफ़र जो है किस तरह से आपको ले जा रहा है और आप कैसे सफ़र में चल रहे हो, रिश्ते कैसे हैं, आपके रिश्ते मजबूत हैं कि नहीं हैं, मजबूत कैसे करें, ये सब कोशिश होती है। तो आगे भी थोड़ी देर में शुरू करेंगे और यादरे राव जी को हम लेकर आएंगे करीबन 7:15 के बीच और उम्मीद कर रहा हूँ कि उनका साथ देंगे आप। और चलो आगे बढ़ते हैं, MC's इंडियन एंड आल एंड फूड का विज्ञापन है, उसे पहले बजाते हैं। दो बजे बजाएंगे विज्ञापन, पहला वो और दूसरा फिर एक और।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं, साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: मित्र, समय 3 मिनट हुए हैं 7:00। आपका तहे दिल से मैं परमानंद स्वागत कर रहा हूँ संगीत सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत पुराने गीतों के कार्यक्रम में। पुराने गीतों में आज का जो पहला गीत है उसे अदा कर रहे हैं मनाडे साहब। बहुत प्यारा सा गीत है और गीत के जो बोल हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, और एक जो लिरिक्स बने हैं ये बहुत सारे बातें आपको याद दिला देती हैं कि किस प्रकार से हमें ये जीवन को व्यतीत करना है। भाईचारा बना रहे, एक दूसरे को सहायता मदद जो भी आप कहें करते रहें, देते रहें, प्रदान करते रहें और फिर खुशी खुशी अपना जीवन को व्यतीत करें और सबको एक सम्मान से माने। तो चलो आगे बढ़ते हैं मनाडे की आवाज़ में, वन ऑफ द मास्टरपीस।

0: या मित्रों अपने लिए जिए तो क्या जिए, मन्ना डे साहब इसे अदा कर रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ गीत आपको अच्छा लगा होगा, और खुशी की बात है कि हमारे साथ जुड़े हैं इस समय राव जी, और उनसे हम कुछ बातें करेंगे। राव जी, रेडियो ब्रिजबानी पर आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार परमानंद जी, पिछले सप्ताह में कुछ तबीयत अच्छा नहीं रहे कारण मैं नहीं आ पाया
0: जी,
1: और अब मैं क्लियर हो गया हूँ
0: जी।
1: और आपका जो गीत बज रहा है आज, पुराने गीत, बहुत बढ़िया मीनिंगफुल गीत है। एक पंडित जी की कहानी मैंने सुन करके लाया हूं
0: जी।
1: पंडित जी, गंगाराम नाम का एक ब्राह्मण था, उसके पिता दादा परदादा सभी संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे, उन्हें सब लोग पंडित जी कह कर बुलाते थे, लेकिन गंगाराम को कोई भी पंडित जी कह कर नहीं बुलाता था। गंगाराम को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी खानदान सभी पंडित कहलाते हैं, मेरे को क्यों नहीं बोलते हैं। वह पंडित जी कहलाने के लिए बहुत बेचैन था। उसने अनेक उपाय सोचे, लेकिन वह किसी में भी सफल नहीं हुआ। ये सोच करके उनका बड़ा दुख हुआ। अचानक उसे ध्यान आया कि चाहे कितनी ही जटिल समस्या हो तो बीरबल उसे हल कर देते हैं। वह दौड़ा दौड़ा बीरबल के पास पहुंचा और उससे बोला, बीरबल जी, मेरी समस्या को आप ही सुलझा सकते हैं। बीरबल ने पूछा, आपकी समस्या क्या है? गंगाराम ने बताया, बीरबल जी, मेरे पास ना तो विद्या है और ना धन दौलत। बीरबल ने पूछा, तो क्या मैं आपको नौकरी दिलवा दूं? गंगाराम बोला, नहीं, मुझे धन दौलत नौकरी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता दादा परदादा की भांति सब लोग मुझे भी पंडित कहकर पुकारे। यद्यपि यह बात आसान नहीं है, परंतु आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आप इसे सुलझा सकते हैं। गंगाराम की इच्छा को देखकर बीरबल बोले, इतनी सी बात है? ये तो मेरे लिए चार आने की बात है, यह काम तो मैं दो या तीन दिन में ही कर दूंगा और आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे। बीरबल की बात सुनकर गंगाराम बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मुझे सब पंडित जी कहेंगे और कहने लगेंगे और मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी और मैं अपने पिता परदादे की, अपने कुल के लिए एक पंडित के रूप में सुनते रहूंगा। उसे प्रसन्न देखकर बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरी एक सलाह माननी पड़ेगी। गंगाराम ने कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगा। बीरबल ने कहा, तुम्हें अधिक कुछ नहीं करना है, जब बच्चे या बड़े तुमसे पंडित जी के कहें तो तुम्हें उन पर खूब गुस्सा करना चाहिए। गंगाराम ने असमंजस में पड़ गया। उसने बीरबल से कहा, मैं तो चाहता हूं कि मुझे पंडित जी कहें, फिर मैं क्यों गुस्सा दिखाऊं? बीरबल ने गंगाराम को समझाया, तुम बहस मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम करो। हाँ, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। गंगाराम ने बीरबल को अपने घर का पता बताया और अपने घर को चला गया। दूसरे दिन बीरबल गंगाराम के घर के पास वाली गली में पहुंची। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बीरबल ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम क्या गंगाराम को जानते हो? बच्चों ने उत्तर दिया, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। कल जब हम लोग खेल रहे थे उन्होंने हमें बहुत डांटा। बीरबल ने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें उससे बदला लेने को तरकीब बताता हूं। जब भी तुम उन्हें देखो तो पंडित जी कहकर बुलाओ। बच्चों ने ऐसा ही किया। जब वो खेल रहे थे ग्राउंड में, जब कभी भी गंगाराम को देखते उन्हें पंडित जी कहकर पुकारते। गंगाराम भी बीरबल के सुझाव को के अनुसार उन बच्चों पर खूब बिगड़ता और डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ता। गंगाराम को चिढ़ते देखकर बच्चे उसे और चिढ़ाते। इतना ही नहीं, बड़ों को भी उसने आनंद आने लगा। वे भी गंगाराम को पंडित जी कहकर पुकारने लगे। इस तरह वह सभी के लिए खेल बन गया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार गंगाराम ने गुस्सा करना छोड़ दिया। बच्चे भी इस खेल से ऊब गए। इस तरह खेल तो समाप्त हो गया, लेकिन पंडित जी नाम बाद में भी चलता रहा। कुछ समय के बाद बीरबल उसी गली में आए और उन्होंने बच्चों से पूछा, गंगाराम जी का मकान कौन सा है? मुझे मिठाई का डिब्बा उनके पास पहुंचाना है। बच्चों ने पूछा, क्या आप पंडित जी को मकान पूछ रहे हैं? बीरबल ने कहा, हाँ हाँ हाँ हाँ भाई, हाँ बच्चे। तो यह कहकर बीरबल बच्चों द्वारा बताए गए घर पर पहुंच गए। बीरबल को घर पर आया देखकर गंगाराम बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल को धन्यवाद दिया। उस दिन से उनके पास कोई विद्या नहीं था, लेकिन उसका तो केवल एक ही नाम प्यारा था और वो था कि उन्हें लोग पंडित जी कहें। और पंडित जी शब्द एक ऐसा शब्द है तो उससे गंगाराम बहुत खुश हो गया। और उस दिन से गंगाराम भी पंडित कहलाने योग्य हो गया। तो एक छोटी सी संगीत सरगम के लिए

0: तो मित्रों, ये थे राव जी, अपनी वाणी सुना रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान ही सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 18:30 हुए हैं इस समय, 7:00, और पुराने गीतों के कार्यक्रम के अंतर्गत आप एक पुराना गीत सुने थे। और अब चलें दो विज्ञापन ले लेते हैं, विज्ञापन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, पुराने गीतों का कार्यक्रम को जारी रखेंगे।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।
0: जी मित्रों,
1: क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: और दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चले किशोर कुमार जी द्वारा अदा किया गया गीत, जिसमें लता जी भी शामिल हैं, अनिल कपूर जी और रति अग्निहोत्री जी मुख्य भूमिका में। बहुत प्यारा सा गीत है। किसी ने मुझे कभी ये गीत सुनाया था और उस दिनों से आज तक ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स हैं। चलो, हंसी मजाक होते होते ये गीत आपके लिए। और चलो भाई, आगे किसी को कुप्ती याद कर रहा था। शैली जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, आपके लिए भी ये गीत है।

0: या मित्रों मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, ऐसे ऐसे गीत जब हम कभी बजाते हैं ना तो बीते हुए कल याद आते हैं, जो गुजरे हुए वक्त है ना वो आ जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं अंदर अंदर, और कभी कभी ऐसे हम फिर याद दिलाते हैं और कहते हैं ना एक चेतावनी के रूप में कि भाई वक्त जो आया था क्यों उसे आपने अपना फ़ायदा नहीं उठाया। तो ऐसे है यार दोस्त मिलते हैं रास्ते में और मिलकर बिछड़ जाते हैं, और फिर क्या होता है आगे, बस यही है जीवन चलता रहता है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे विज्ञापन की तरफ, विज्ञापन के बाद दो और हम गीत आपके लिए बजाएंगे। चलो तो ये है पहला वदेरे की ये तो मैं यही बजा दिया था, आगे चले इसको बजाते हैं।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है, ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो, ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Mitro, hum aage badhte hain purane geeton mein. Agla jo geet hai, ise ada kar rahi hai Lata ji. Mere Mehboob film ka liya gaya hai.

0: जी मित्रों, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, और इस समय घड़ी के अनुसार 7:30 बजे हैं, और उन लोगों को हम याद करें जिनका आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, जिसका जन्मदिन है आपके जीवन में ऐसे खुशी का दिन हमेशा आते रहें, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको बस याद करते हुए कहते हैं कि आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे। और अभी हम बजाएंगे एक प्यारा सा गीत, मगर गीत से पहले हम चलें कुछ खबर ले लेते हैं, विज्ञापन, और उसके बाद आपको दो है पुराने गीत और जो सुनाएंगे। तो चलते हैं, पहला खबर ये है जी, नहीं
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: जय मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं, और मेरे साथ जुड़े हैं पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी। पंडित जी, एक बार फिर शनिवार आ चुका है और आपका स्वागत है तहे दिल से रेडियो ब्रिजबानी पर। मेरे तरफ से सादर प्रणाम, हमारे श्रोतागण की तरफ से नमस्कार आपको।
4: नमस्कार परमा जी, सभी को प्रणाम। और चलते हैं आज हम जो इस महीने का भाद्रपद महीना है, उसके लिए जो गणेश पूजा का आरंभ हुआ है मंगलवार से गणेश चतुर्थी के साथ, और इसी तरह जो इसका विसर्जन होगा वो शुक्रवार, यानी कि 10 रोज का, कुछ लोग 10 रोज का स्थापना करते हैं, कुछ एक दिन में खत्म करते, कोई 3, कोई 5, तो शुक्रवार को चतुर्दशी यानी कि 14वें दिन जो हमारा भाद्रपद महीने का है, शुक्ल पक्ष का, शुक्रवार को पूर्ण हो रहा है, जो गणेश जी का विसर्जन आखिरी दिन है। और फिर शनिवार को पूर्णिमा का तिथि है, और रविवार से जो पितृ पक्ष का आरंभ हो जाएगा, यानी 27 तारीख से। परमा जी, तो बहुत लोग पूछते हैं कि किस दिन पितृ पक्ष शुरू होगा, तो पितृ पक्ष रविवार को शुरू हो जाएगा और 27 तारीख होगा, सितंबर 27 तारीख से पितृ पक्ष का आरंभ होगा। तो यही छोटी सी सूचना है, और लोग जैसे जैसे अपना कार्य करते हैं उसी तरह अपना दैनिक जीवन निभाते रहें। और जो गणेश पूजन का महीना चल रहा है, विघ्न बाधा को दूर करने वाले रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, गणपति भगवान का आशीर्वाद जरा दृष्टि बनी रहे, यही हमारी प्रेरणा है और सभी परिवार के लिए कामना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुनरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। एक बार बोलो गणपति भगवान की जय।
0: जय
4: रमा जी, धन्यवाद समय के लिए।
0: जी पंडित जी, जाने से पहले एक आपसे निवेदन है कि आने वाला शनिवार को आप जो पितृपक्ष आ रहा है ना, उसके विषय में थोड़ा चर्चा करना, और क्या नियम है, क्या क्या करना चाहिए लोगों को, ये थोड़ा बतलाना, क्योंकि लोग हमेशा पूछते रहे हम क्या करें पितर पक्ष में, ठीक है? शनिवार को,
4: जी हाँ, शनिवार को हम थोड़ा सा दूर रहेंगे, लेकिन गोलकोष पूजा में जाना है, तो शायद रास्ते में जाते समय आपसे वार्तालाप हो जाएगी, तो पितर पक्ष के बारे में हम शनिवार को बातें करेंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, पन्नाम आपको एक बार फिर धन्यवाद,
4: आशीर्वाद,
0: धन्यवाद पंडित जी। तो मित्रों, ये थे पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी, और याद रहे लोग पूछते रहते हैं कि पितर पक्ष में क्या करना चाहिए, तो शनिवार के सुबह पंडित जी आएंगे और कुछ हमें और जानकारी प्रदान करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। शैली जी गुड मॉर्निंग, चलो आया है लता जी का ये गाना, शामिल करते हैं आपको।

0: जी मित्रों, आज आई बाहर दिल है सुन रहे थे, और चलें आगे बढ़ें, एक और खबर ले लेते हैं डॉक्टर कुमार का।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact प्रेरणा on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
0: जी मित्रों, 18 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, चले आगे बढ़ते हैं। अमीर गरीब का बहुत ही लोकप्रिय गीत है, इसे सुनाएंगे आपको किशोर कुमार जी, साथ दे रहे हैं बनडे साहब। ये बजाना है क्योंकि मैं आपका एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जो गीत कह रहा है ना, इसको शाम को ये महफिल को सजाना आप।

0: जय मित्र, फिर देखता हूँ शाह आमिर गरीब का फिल्म का एक गीत था और अच्छा लगा मुझे। सीन बहुत बढ़िया है, जब देखते हैं तब यह बहुत आनंद देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए विज्ञापन ले लेते हैं।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। तो बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी। रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: मित्र, 11 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके सेवा में लेकर आएंगे। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गो टू सी ग्रेट फिल्म का लोकप्रिय गीत है उदित जी अलका जी के साथ।

0: जी मित्रों, 7 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और चलें आगे एक खबर ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
0: दोस्तों, 6 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, और चले आगे बढ़ते हुए। अगला जो गीत है, सुनिधि चौहान जी और सोनू निगम अदा कर रहे हैं, और जुड़ी नंबर 1 से गीत को मैंने लिया हूं, सुनिए।

0: किधर?
1: अब देखिए मित्रों, 2 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और एक कुछ सुनाना है आपको दोस्तों। इसको पीछे ले चलते हैं। तो हम आते हैं इरफान खान जी के साथ, चलो ये डायलॉग सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे।
0: क्या सर, जाने दिया आपने?
2: अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती।
1: तो मित्रों ये था एक डायलॉग और इरफान खान साहब की आवाज़ में बहुत बढ़िया डायलॉग ये बोलते थे और हमारे बीच अब नहीं रहे और अब हमारे घड़ी में लगभग 1 ही मिनट बचा है और अब समय आया है नज़दीक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया का, जो आपके लिए हम पेश करेंगे। मगर उससे पहले आपको ले चलते हैं रानी क्रिएशंस के विज्ञापन के तरफ, विज्ञापन के बाद फिर आपको सुनवाएंगे उनका साप्ताहिक कार्यक्रम। तो चलो आगे बढ़ते हैं जबकि 8 बजने वाला है। रानी क्रिएशंस की ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम सबको। और शनिवार आ चुका है बहुत जल्द, आजकल ऐसे लगता है ना कि कल ही आए थे रेडियो पर और फिर आ गए एक बार और, यानी कि शनिवार आता है फिर सप्ताह शुरुआत होती है सोमवार और थोड़े दिन बाद ऐसे लगता है कि फिर आगे शनिवार, क्या बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। सर्वप्रथम सुनते हैं रानी क्रिएशंस का एक खबर, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: Jai Mitro, Rani Creations ke shop ke aawaz badla dun ki ye dukaan khulti hai somwar se ravivar ke subah hamesha 10 baje aur ravivar ko jaldi band ho jati hai 3 baje, baki din 4 बजे क्लोजिंग होता है। यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े होते हैं, हर अवसर के लिए कपड़े होते हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आकर आप कपड़े वगैरह देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी जाकर ranicreations.com पर गिफ्ट वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो चलो आगे, आज मैं पहला गीत जो चुना हूँ आपके लिए वो गीत अरिजीत सिंह साहब सुनाएंगे, 7 फेरे गीत के बोल हैं।

जब मित्रों अरिजीत सिंह और साथियों का गाया हुआ है बहुत ही प्यारा सा गीत था, खासतौर से जब मंडप में ब्याह वगैरह हो रहा है तो कभी काल ऐसे वचन सुनाना बहुत जरूरी होता है ताकि उनको पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं। तो ये था प्यारा सा गीत जो आप रानी क्रिएशंस के सौजन्य से सुन रहे थे। और याद रहे रानी क्रिएशंस में हर प्रकार के कपड़े, जो भी आपको लेडीज जेंट्स किड्स का कपड़े चाहिए यहाँ मिलता है। शादी वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको शादी के कपड़े मिलेंगे, मैचिंग ज्वेलरी मिलेगी और एक्सेसरीज बहुत सारे मिलेंगे रानी क्रिएशन शॉप में। इन अदर वर्ड्स वन स्टॉप शॉप। चलें, अब पता है याद रहे 33 बालाकलावा स्ट्रीट उलंगेबा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा गीत है साजन संग फेरे ए, और आपको सुना देता हूँ क्योंकि बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं और पंडित वगैरह मंडप को सजाए रहे हैं, मंडप में जाकर करते हैं शादी, दूल्हा दुल्हन भी एक दूसरे को देखकर वचन वगैरह लेते हैं। मैंने सोचा चलो मैं ये सुना देता हूँ, थोड़ा सा उनको और याद आएगा जिनका ब्याह हो रहा है कि व्हाट इज कमिटमेंट, किस तरह से रिश्ता निभाना है, ये सब बातें।

जी हाँ, ये लगन गीत था जो आप सुन रहे थे, और एक और गीत सुनाते हैं इस सेगमेंट का, लेकिन अब पार्टी का समय आया है, वैसा गीत सुनाएंगे आपको। और आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने गाने अभी तक बजे हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हुए, अब पार्टी टाइम आया है, तो पार्टी टाइम में कैसे गीत बजते हैं सुनवाते हैं। ये आइटम सॉन्ग है, श्रेया घोषाल जी और अमित त्रिवेदी जी अदा कर रहे हैं।

0: जी मित्रों, इसी के साथ ही रैनी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक और सेगमेंट लेकर उपस्थित होंगे। और याद रहे, हर प्रकार के कपड़ों के लिए रानी क्रिएशन शॉप याद करें, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, साड़ीज, ब्लाउजेस, संडाई, स्केट्स, और जिसको साड़ी पहनना नहीं आता रानी क्रिएशन साड़ी को रेडीमेड कर देते हैं, और रेडीमेड साड़ीज भी मिलते हैं, तो ये याद रखें। और अप टू 50% डिस्काउंट कपड़ों पर आपको मिलेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस खबर के साथ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, अब आते हैं वापस संगीत सरगम प्रोग्राम में और विज्ञापन सुनाते हैं आपको पहले।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
0: चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दीवाने तो दीवाने हैं, श्वेता शेट्टी जी अदा कर रही हैं।
3: और 8381360 ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
0: चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दीवाने तो दीवाने हैं, श्वेता शेट्टी जी अदा कर रही हैं।
4: चले, चले, चले, चले, चले, चले, चले, चले,

जय मित्रों, दीवाने हैं तो दीवाने हैं, आप सुन रहे थे। अब याद रहे, इस प्रोग्राम के बाद रिया जी आ जाएंगी और टॉप 10 को लेकर, और इसके साथ साथ आप कल की तरफ अगर देखें, समय जो है कल का, आपको मालूम है कि कल है रविवार, और रविवार को सर्वप्रथम आप सुनते हैं कुछ पुराने गीतों को सुबह के बेला में, और फिरोज़ भाई जनरली आते हैं, फिर 7 बजे आप इस्लामिक प्रोग्राम सुनेंगे, फिर नंद किशोर दास प्रभु जी आ जाएंगे 8 बजे से, वो लेकर आएंगे वेदवाणी, और फिर 9 बजे जतीश पूरन जी आएंगे, और उसके बाद फिरोज़ भाई फिर आएंगे, और फिर 12:30 बजे से रॉय सिंह जी आपकी सेवा में हाजिर होंगे, और सुशीला जी 2:30 बजे से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के।

जय मित्र, तुम ले जा दुपट्टा संभाल के, ओढ़ो दुपट्टा संभाल के, सुन रहे थे। और इसी गीत के साथ साथ समय पूरा हुआ संगीत सरगम प्रोग्राम का। अगले शनिवार को एक बार फिर एक और सेगमेंट लेकर आएंगे आपके सेवा में और संगीत सरगम प्रोग्राम को पेश करेंगे। तब तक के लिए परमानंद को आज्ञा दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। और मित्रों, याद दिला दें कि निबिया जी इसके बाद आ जाएंगी और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उनका साथ देंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड विद द किड्स। और हम मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए यू हैव अ लवली एंड एंजॉयबल वीकेंड प्लस वट एवर मे कम। पार्टी साटी होगी, बहुत कुछ होगा, एंजॉय द टाइम। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

0: बड़ी सॉलिड मस्ती।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से। वीकेंड आ गया है, मजे करने का वक्त आ गया है, अच्छा खाने का वक्त आ गया है, गपशप करने का वक्त आ गया है, अच्छा गेट टूगेदर करने का वक्त आ गया है, पिकनिक मनाने का वक्त आ गया है, और तो और बसंत का ऋतु भी आ गया है। जी हाँ, तो आप क्या करने वाले हो इस वीकेंड, कुछ प्लान किया है आपने? चलिए, नहीं किया है तो हम आपके लिए करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले प्रोग्राम हो गया है टॉप 10 हॉट 10 शुरू। तो टॉप 10 हॉट 10 का मतलब वही है कि आपके लिए 10 चुनिंदा ट्रेंडिंग गाने, हॉट एंड हैपनिंग गाने लेकर हम आ गए हैं। हम आपको गानों के साथ वाइब तो करवाएंगे, लेकिन नॉर्मल गानों के साथ नहीं, बल्कि ट्रेंडिंग गानों के साथ, वही गाने जो लाल मिर्ची से भी तीखे हैं। जी हाँ, और इसी के साथ सबसे पहले जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है 10वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का, मूवी हैवान का गाना फराटा। जी हाँ, तो फराटा सुनते हैं। और इस मूवी में हैं अक्षय कुमार और साथ में सैफ अली खान। नाउ हैवान कौन है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रेलर देखेंगे एंड मूवी चेकआउट करेंगे, लगी हुई है थिएटर्स में। इसी के साथ ये गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, उसी के साथ ये गाना तो आपने सुन लिया है और इसमें सैफ अली खान आपको वाइब करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो भी एक ट्विस्ट के साथ। वेल, आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू, ट्विस्ट क्या है वो आपको खुद ही पता चलेगा जब आप पिक्चर देखेंगे। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना हम आपको सुनाने वाले हैं मिर्जापुर मूवी का। जी हाँ, मिर्जापुर ने सारे के सारे गाने एकदम खतरनाक लिए हुए हैं, मतलब एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि अरे जो पहला गाना सुना था वो कुछ ऐसा ही था, मतलब सबके सब टोटली डिफरेंट है और टोटली डिफरेंट वाइब के। ये वाला जो गाना है वो हरियाणवी टोन में है। जी हाँ, मिर्जापुर अच्छा काम कर रही है और मिर्जापुर वही कास्ट के साथ, उसी कहानी के साथ आपको वापस मिली है जो कि आपने सीरीज में देखी है। पंकज त्रिपाठी, रवि किशन के साथ द्वेंदु शर्मा और साथ में अली फजल, ये सब के सब आपको वही मिर्जापुर की गलियों में लेकर जाने वाले हैं। वो सत्ता का लालच, वो बंदूक के साथ होली खेलना, सब कुछ होने वाला है इसमें। अगेन, दिस इज नॉट द मूवी फॉर यू, ये लगी हुई है थिएटर्स में, आप इसे देख सकते हो, लेकिन आप इन्हें अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बिकॉज इतनी सारी कर्सिंग है इसमें कि अगर हम गिनना शुरू करेंगे तो गिनती खत्म हो जाएगी, कर्सिंग खत्म नहीं होगी। और यही इसकी हाईलाइट भी है, मतलब यू कांट कंप्लेन अबाउट इट, बिकॉज जो इसका फैंडम है, जो कल्ट फैंडम इसको मिला है, वो इसी वजह से मिला है क्योंकि ये अलग किस्म का जो जॉनर जो है वो लेकर आती है। सो या, मिर्जापुर लगी हुई है एंड देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं, बट ऑफकोर्स यू कांट वॉच इट विद योर किड्स एंड फैमिली, दैट्स फॉर श्योर। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए।

दिस वन इज फॉर यू ऑफ कोर्स. मतलब गाना आपने सुना, आपको बेशक समझ ना भी आया हो इसके वर्डिंग्स, बट जो वाइब है भाई, वाइब है, मिर्जापुर की वाइब ही ये है. और ये गाने ने बहुत ही अच्छे से प्रूव किया है उसको. जी हाँ, तो मैंने कहा था ना, जैसे कि आपने पहला गाना सुना ये वाला, सो ये आपको नहीं लग रहा मिर्जापुर का गाना. एक और गाना आप सुनेंगे, वो भी नहीं लगेगा कि मिर्जापुर का गाना है. लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन ये सारे के सारे गाने जो हैं वो मिर्जापुर के हैं. मिर्जापुर की वर्सेटैलिटी को दिखाते हैं और मिर्जापुर का फैंडम क्या है उसको भी दिखाते हैं. मतलब सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर दो ऐसे शोज हैं इंडिया के जो सबसे ज्यादा हाईली रेटेड शोज हैं. दोनों ही एक ही टाइप के हैं. जी हाँ, दैट इज द फन फैक्ट. इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ जो कि है जय जय राम. जी हाँ, सो आ गया है थियोरेटिकल ट्रेलर. जी हाँ, थियोरेटिकल ट्रेलर आ गया है राम भगवान की उस जर्नी का. वेल ऑफ कोर्स मैं अभी भी इस बात से पीस नहीं बना पा रही हूँ, इस फैक्ट से पीस नहीं बना पा रही हूँ कि रणबीर कपूर इज प्लेइंग लॉर्ड राम इन रामायण. बट ठीक है, अब हम क्या ही कर सकते हैं. सो इसमें एआर रहमान ने म्यूजिक दिया हुआ है, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह ने सिंगिंग की है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है मिलकर आए हैं. आपको ये भी बता दूं कि साई पल्लवी इसमें सीता माता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और सबको सबके कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं. बस जो राम और सीता का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वही एक्टर लोगों को पसंद नहीं आ रहे, बाकी सब बढ़िया है. और इसी के साथ आइए, क्योंकि इसके गाने आने शुरू हो गए हैं क्योंकि कुछ वक्त में मूवी रिलीज होगी, और जो पहला गाना आया है वो है जय जय राम. सुनते हैं इस गाने को और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें. जी हाँ, तो रामायणा ने ड्रॉप कर दिया है अपना पहला गाना जय जय राम. ये है 8वें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का.

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे गानों को, ट्रेंडिंग गानों के लिए ही है। जी हाँ, तो रंगियारा जो है वो अगले गाने का नाम है और रंगियारा कौन सी मूवी का गाना है? हैवान का। जी हाँ, एक और गाना आपने सुना है हैवान का अभी अभी और ये रंगियारा भी हैवान मूवी का ही गाना है। इसमें सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार है। मूवी थिएटर्स में अभी लगी हुई है और इसी के साथ बाकी और कौन कौन सी मूवीज लगी हुई हैं इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मिर्जापुर, जैसे मैंने आपको बताया, बट ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले देख सकते हैं। इट्स अ अडल्ट मूवी एंड बच्चों के साथ या घर वालों के साथ या फैमिली के साथ आप इसे ना देखें। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारी कर्सिंग और गलत वर्ड्स का इस्तेमाल इस मूवी में किया गया है और आप ट्रेलर देखिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। इसी के साथ हनुमान अंश जो है वो आप देख सकते हैं, एक मूवी जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। जब स्टार्टिंग में आई थी तो इतनी अच्छी कमाई नहीं कर पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी। इसकी जो प्रोड्यूसर है उन्होंने पहली बार मूवी प्रोड्यूस की है और इसमें जो लीड रोल जिसने प्ले किया है वो एक्टर पहली बार एक्टर बने हैं। वो बैक स्टेज असिस्टेंट थे जहां पर वो चाय, पानी, कॉफी जो है वो सर्व किया करते थे जो एक्टर्स आते थे वहां पे डायरेक्टर्स को। लेकिन एक्टर ने, जिसने मूवी करनी थी, उसने छोड़ दी मूवी और उसके बाद उन्हें लिया गया। क्या टर्न ऑफ इवेंट्स था, राइट? और अब ये मूवी इतनी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, इतनी ज्यादा हिट हो गई है कि उस बंदे का करियर बन गया है। जी हाँ, सो किस्मत किस्मत पे लिखा है भाई, है ना? वाह, ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना, रोटी रोटी पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सो फिल्म फिल्म पे लिखा है एक्टिंग करने वाले का नाम। कहां से होके, किसके पास से निकल के कहां पहुंच गई और कौन हीरो बन गया इस मूवी में? जी हाँ, ऑफ कोर्स नीम करोली बाबा की जिंदगी की ये कहानी है, कैसे उन्होंने भगवान के साथ अपना दिल लगाया और कैसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने उनके साथ दिल लगाया, यही कहानी है। देखिएगा जरूर, हाईली हाईली हाईली रिकमेंडेड। और इसी के साथ अगला गाना आपको सुनाने के लिए मैं तैयार हूं, विच इज रंगियारी फ्रॉम द मूवी हवेली।

रंगी आरा। और एक चीज बताऊं आपको, इसमें सैफ अली खान अंधे व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हैवान में। जी हाँ, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं स्पॉइल करूंगी आपके लिए, बट यहां पर हनुमान अंश के बारे में मैंने बात की और साथ में मैंने बात की मिर्जापुर की। तो 309 करोड़ मूवी जो है वो कमा चुकी है हनुमान अंश। मैं आपको बता दूं, जब पहला दिन था मूवी का तो 10 लाख रुपए कमाए थे सिर्फ इस मूवी ने, और अब देखिए 309 करोड़ वर्ल्ड वाइड। वहीं मिर्जापुर की अगर बात की जाए तो 2 हफ्ते हो गए और 200 करोड़ क्लब में एंटर हो चुकी है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर तो भाई जा रही है खतरनाक, इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जरा चलते हैं ऑफकोर्स हॉलीवुड मूवीज की तरफ। हॉलीवुड मूवीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले ऑफकोर्स द ओडिसी, क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी, और साथ में स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे। जी हाँ, बोथ द मूवीज, और दोनों ही मूवीज में एक कॉमन चीज है और वो है टॉम हॉलैंड। मतलब टॉम हॉलैंड आपको दोनों ही मूवीज में मिलने वाले हैं, एंड इन्हीं दोनों मूवीज की बदौलत टॉम हॉलैंड जो है वो बन गए हैं हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्टर ऑफ ऑल टाइम इन जस्ट 30 ईयर्स। मतलब 30 साल की उम्र में ही वो इतना बड़ा मकाम हासिल कर चुके हैं, जो कि अगेन मैंने पहले भी आपको बताया था इसके बारे में। सो ये द ओडिसी एंड ब्रांड न्यू डे, यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में उन्होंने उनके इस रिकॉर्ड में जो है उनकी मदद की है। इसी के साथ एक और मूवी जो आप देख सकते हैं वो है इंसिडियस। ऑफ कोर्स वो एक हॉरर मूवी है, और उसके अलावा एक और हॉरर मूवी है रेजिडेंट ईविल, जो कि लगी है इस हफ्ते थिएटर्स में। मतलब वो 18 सितंबर को रिलीज हुई थी पिछले कल। और एक्शन, हॉरर, साईफाई, थ्रिलर, ये सब कुछ सर्व होने वाला है। आप लोग बोलोगे कि गॉथिक मूवीज का टाइम चल रहा है, मतलब हर हफ्ते एक ना एक गॉथिक मूवी तो आपको नहीं मिली जाती है। वेल, यू आर कांडा राइट इन दैट वे, क्योंकि सच में ऐसा हो रहा है। सो या, ये सारी की सारी मूवीज आप देख सकते हैं, और मुझे बताइए आप क्या देखने की कोशिश करने वाले हैं। इसी के साथ एक और मूवी है जो इंडिया की ही है, वो है दायरा। और ये दायरा मूवी जो है इसमें आपको पृथ्वीराज सुकुमारन मिलेंगे और साथ में करीना कपूर खान मिलने वाली है। सो ये भी एक मूवी है जो आप देख सकते हैं। चलिए, ये सब आप देख सकते हैं अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। और इसके अलावा 2 मूवीज, बड़ी बड़ी मूवीज के ट्रेलर्स भी आए हैं, विच आई एम गोना टॉक अबाउट। लेकिन पहले मैं आपको सुनाने वाली हूं अपना 6वें नंबर का गाना, जो कि है मदहोश। जी हाँ, मदहोश, और ये है टॉक्सिक मूवी का गाना। एंड टॉक्सिक की छुट्टी हो चुकी है, टॉक्सिक की टॉक्सिसिटी ने उसको यहां पर घेर लिया है। ऐसा नाम रख दिया मूवी का कि सारी फंक्शन खराब हो गई, मुझे तो लग रहा है। एंड या, टॉक्सिक मूवी का ये गाना बहुत अच्छा है, बेशक मूवी खराब हो या ना हो, ये गाना सुनते हैं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शानिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शानिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। वहीं दोस्तों, एक और मूवी रिलीज होने वाली है। जी हाँ, एक और मूवी रिलीज होने वाली है और उसके बारे में बात करना बनता है, क्योंकि वो अगले हफ्ते रिलीज होगी और उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया है। जी हाँ, तमन्ना भाटिया ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि सुर्खियों में बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। वो है कि उन्होंने अपने अभी तक के करियर में सिद्धार्थ मल्होत्रा से ज्यादा खूबसूरत बंदा नहीं देखा। या शी सेड इट, शी लिटरली सेड इट एंड पीपल वर लाइक या यू आर राइट, काइंड ऑफ राइट, बिकॉज सिद्धार्थ मल्होत्रा की हैंडसम गिरी के फैन बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं की मूवी आ रही है द वी वन। जी हाँ, द वी वन जो है मूवी, आपने नहीं देखा है उसका ट्रेलर तो जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें आपको तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा मिलने वाले हैं और अगेन इट्स अ हॉरर कॉमेडी सॉर्ट ऑफ मूवी जो कि उसी जॉनर को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है जिससे स्त्री, मुंजिया और बाकी सारी मूवीज निकल कर आई हैं। और कुछ वक्त हॉरर कॉमेडीज के लिए ये जो पिछला कुछ वक्त रहा है बहुत ही अच्छा रहा है और इसीलिए पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग मोर इन दिस जॉनर। जी हाँ, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया भी आ गए हैं इस जॉनर में एंट्री मार के। और इसी के साथ अगला गाना जो है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो है मिर्जापुर का। ये है पांचवें नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का। एंड कैन यू गेस गाना कौन सा है? सांसों की माला में सिमरूं। जी हाँ, मुझे नहीं गाना है, डोंट वरी, मैं नहीं गा रही हूँ, सो चिंता में मत हो जाइए। यहाँ पर गाना सुनिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको भी दिखा बैटमैन? जी हाँ, आप लोग बोलोगे बैटमैन दिखा कहाँ पे, किसको? अरे अगर आप सिडनी में गए होते तो शायद आपको थर्सडे को सिडनी में बैटमैन दिख जाता, क्योंकि वहां पर लोगों को बैटमैन दिखा। जी हाँ, सो ये कहानी क्या है, एक बैटमैन इम्पर्सनेटर जो है उसे स्पॉट किया गया जब वो खड़ा था ऑन द रूफ ऑफ सिडनी ओपरा हाउस, और थर्सडे को जो है उन्हें देखा गया। लिटरली ओपरा हाउस के ऊपर एक ब्लैक कपड़ों में, वैसे ही लिबास में बंदा जो है वो खड़ा था, उसके जो केप था वो हिल रहा था, और सब कुछ जो है वो वैसा ही लग रहा था जैसा बैटमैन मूवी में आपने देखा है। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि वो वहां पर था क्यों? जी हाँ, सो ये अनयूजुअल साइटिंग जो है उसने काफी सारी अटेंशन ड्रॉ की है, और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि बैटमैन डे जो है वो आ रहा है। जी हाँ, बैटमैन डे जो है वो आ रहा है, और उससे पहले एक बैटमैन जो है वो ओपरा हाउस के ऊपर, सिडनी ओपरा हाउस के ऊपर लोगों को दिखा। लोग कह रहे होते कि हाँ तो क्या बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखती तो क्या चांसेस थे, कितने परसेंट चांसेस थे कि आप मानते कि वो रियल है? मतलब क्या आपको लगता है कि ये जो सुपर हीरोज हैं वो रियल में हो सकते हैं? वेल ऑफ कोर्स 99.9% तो यही बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कैसे रियल हो सकते हैं, ये तो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, इन्हें बनाया गया, ऑथर्स ने क्रिएट किया, राइटर्स ने क्रिएट किया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि देयर आर चांसेस, और कुछ लोगों का मानना है कि रियल में है, क्योंकि जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है, ऐसे कहां से आ जाएंगे, कैसे आइडिया आएगा किसी को कि बैटमैन टाइप की भी कोई चीज हो सकती है? मैं तो कहती हूं अगर आप सिडनी ओपरा हाउस के पास खड़े होते हैं ना थर्सडे को, तो शायद आपको भी लगता है कि क्या ये रियल बैटमैन तो नहीं है, क्योंकि जितने भी लोगों ने उन्हें देखा हो सब ऐसे मान रहे थे कि क्या सच में बैटमैन है क्या। वेल बचपन में मैं भी यही सोचती थी, पर अब तो मुझे पता है कि बैटमैन इज नॉट एग्जैक्टली बैटमैन, आई मीन बैटमैन इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट जब मैं बच्ची थी तो बाकी बच्चों की तरह मैं भी यही मानती थी कि बैटमैन जो है वो रियल है। आप मुझे बताइए क्या आपने वो वीडियो देखी जहां पर वो सिडनी ओपरा हाउस में बैटमैन खड़ा हुआ लोगों को नजर आया? जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है चौथे नंबर का गाना इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का। गाने का नाम है राणा जी 2.0। जी हाँ, ये गाना जो है वो काफी वायरल हो रहा है फॉर सम रीजंस, क्योंकि ये गाना ओरिजिनली काफी पॉपुलर था, इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, फॉर अ चेंज ये बुरा साउंड नहीं कर रहा है। जी हाँ,

एक बात तो पक्की है कि पहले भी लोगों को चटपटे गाने पसंद आते थे और आज भी आते हैं चटपटे गाने पसंद। मतलब आप गाने के वर्डिंग सुने तो आप कह ले क्या ही गाना है ये, मतलब क्या ही चल रहा है ये, राइट। बट फिर भी लोगों को हमेशा से चटपटी चीजें पसंद है, चटपटे गाने पसंद है, एंड हेंस द सॉन्ग इज स्टिल वायरल। जी हाँ जी हाँ, मतलब पहले भी बहुत ज्यादा वायरल था, अभी भी वायरल हो रहा है। चटपटी चीजें चाहिए लोगों को, मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको गाना सुनाने के लिए तैयार हूँ मैं तीसरे नंबर का, विच इज समझो ना, और ये है द विवान का गाना, जो कि मैंने जिसके बारे में आपको बताया कि कैसे एक मूवी जो है वो अब जो हफ्ता है फ्राइडे को रिलीज होने वाली है, जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा, और आपको मैं बता दूं कि इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया है। लेकिन इसी के साथ साथ दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर भी आ गया है, क्या आपने देखा वो? जी हाँ, नहीं देखा आपने तो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें श्रेया सरन, उसमें आपको मिलने वाली है इशिता दत्त, उसमें आपको मिलने वाले हैं अजय देवगन, और उसमें आपको तब्बू भी मिलने वाली है, और भी लोग इसमें आपको मिलने वाले हैं। सो दृश्यम जो है वो एक ट्रायोलॉजी है जिसकी पहले दो मूवीज आ चुकी हैं और सुपर डुपर हिट रही हैं पहले भी दो मूवीज। उसका तीसरा पार्ट द कंक्लूजन द फाइनल पार्ट इज कमिंग वेरी सून, और अक्टूबर में ये आएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। और अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देखिए और मुझे बताइए कि आर यू एक्साइटेड और नॉट।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि मिर्जापुर मूवी जो 200 करोड़ क्लब में एंट्री मार चुकी है, 200 क्लब करोड़ के ऊपर जो है वो कमाई कर चुकी है फिलहाल के लिए, वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग गाने, बिल्कुल यूनिक, मतलब एक जैसा एक भी गाना नहीं, सेम कोई भी गाना नहीं, वो लेकर आई है। आपने पहले ही दो गाने इसके इस लिस्ट में सुने हैं। अब जो तीसरा है वो है वारू फॉरएवर। जी हाँ, और ये भी मिर्जापुर द मूवी का गाना है। सुनते हैं इसको और फिर जाएंगे सीधा नंबर 1 गाने की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। पहुंच गए हैं हम नंबर वन सॉन्ग के ऊपर, और वो है आवारापन टू का तेरा मेरा रिश्ता। आप लोग बोलो कि पिछले चार हफ्ते से नंबर वन बना हुआ है। वेल, कुछ भी कहो, ये कितना भी नंबर वन बन ले, लेकिन चलते रे इश्क में डूब जाते हैं जो कि गाना था गदर टू का, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला गाना, नंबर वन ट्रेंड करने वाला गाना जो है वो हमारी लिस्ट का रहा है आज दिन तक हमारे इस प्रोग्राम का। दूसरा गाना आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, जब स्त्री टू आई थी तो उसका गाना उसने भी पता नहीं कितने महीनों नंबर वन ट्रेंड किया। तो ये गाना तो फिर भी अभी दो चार महीने से नहीं बल्कि दो चार हफ्ते से ही ट्रेंड कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए, दे आर वर्ड सॉन्ग्स जो कि इससे ज्यादा ट्रेंड कर चुके हैं और इससे ज्यादा वक्त के लिए ट्रेंड कर चुके हैं। सो या ये है आवारापन टू का गाना जो कि आवारापन वन में भी था, और इसको फिर से वैसे ही बनाया गया है, इसीलिए खूबसूरत लगता है। इसकी कॉम्पोजिशन, इसके लिरिक्स सब एकदम खतरनाक है, थोड़ा सेंटी टोन की तरफ है, लेकिन गाना एकदम जबरदस्त है। आप सबसे अब हम विदा लेना चाहते हैं, मिलेंगे अब आपसे मंडे को इवनिंग वाइब में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, वेल ऑफ कोर्स पिकनिक मनाने जाइए, खाने जाइए, घर पे मजे कीजिए, बाहर मजे कीजिए, जो करना है वो कीजिए, वीकेंड को अच्छे से जिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग, नंबर वन सॉन्ग आप सबके लिए, तेरा मेरा रिश्ता फ्रॉम द मूवी आवारापन 2।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।